आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

रेडियो FM ग्रीन आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

FM ग्रीन आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराए और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां

वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहे, और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, और इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो PPH है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, जिसे कि हम प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं प्रसव के बाद बहुत अधिक खून का बहना। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मातृ मृत्यु का यानी कि गर्भवती महिलाओं के मौत का सबसे बड़ा कारणों में से एक PPH है। ये माँ के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन अगर समय पर पहचान की जाए और सही से इलाज हो तो माँ की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PPH होता क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो प्रसव के बाद ज्यादा खून बहना, और मेडिकल भाषा में कहें तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ये डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जिन माताओं की, जिन औरतों की अभी अभी डिलीवरी हुई है, उन्हें 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। PPH होने के 4 बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक है गर्भाशय का ढीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय को सख्त होना चाहिए, लेकिन इसके उलट गर्भाशय कई बार ढीला रह जाता है, और अगर वो ढीला रह जाता है तो जो खून होता है वो रुकता नहीं और लगातार बहता रहता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान माता को चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी, योनि या तो फिर बाहर के हिस्से में चोट की वजह से ये हिस्से फट जाते हैं और खून बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है।

तीसरा कारण यह है कि नाल या उसके टुकड़े अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून लगातार बहता रहता है। और कुछ महिलाओं में खून जमने की भी दिक्कत होती है, उन्हें अगर आम से भी कोई चोट लग जाए तो उनका खून जमता नहीं है। और प्रसव के दौरान जब खून बहता है तो ऐसे बीमारियों में जिन्हें खून जमने की पहले से दिक्कत है उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खून लगातार बहता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस माँ को ज्यादा खतरा होता है। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव में भी ज्यादा खून बहा हो उन्हें दूसरी डिलीवरी में भी ज्यादा खतरा रहता है, और जिनका डिलीवरी बहुत लंबा चला हो उन्हें भी ज्यादा खतरा होता है। जिनके पेट में ज्यादा पानी हो या फिर दो बच्चे हों तो उन्हें भी इस बात का यानी कि PPH का खतरा रहता है। वहीं जिन महिलाओं को पहले से खून की कमी है यानी कि एनेमिक है उन्हें भी PPH का खतरा रहता है। और वहीं आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसी को भी बार बार बार बार मां नहीं बनना चाहिए, यानी कि बार बार डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। जिन महिलाओं को बार बार डिलीवरी होती है उन्हें भी PPH होने का खतरा होता है। जिन भी महिलाओं की बार बार डिलीवरी होती है उनका शरीर वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें PPH का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब तक हमने ये जान लिया कि किन्हें खतरा हो सकता है, किस स्थिति में खतरा हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर आप कैसे खतरे के लक्षण को पहचान सकते हैं ताकि सही समय पर अगर लक्षण की पहचान हो जाए माँ को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, अगर डिलीवरी के बाद खून से कपड़े या पैड बार बार भीग जाए, खून के साथ बड़े बड़े थक्के निकले और माँ बहुत कमज़ोर दिखे, उन्हें चक्कर आए या वो बार बार बेहोश हो तो ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। ये संकेत देती है कि उस माँ को PPH हो सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि क्या उनके हाथ पैर बार बार ठंडे पड़ रहे हैं या फिर उन्हें पेशाब बहुत कम आए, तो ये सारे लक्षण बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं। ऐसी महिलाओं को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है। वहीं सबसे ज़रूरी बात कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है, पर बार बार बहुत ज़्यादा थक्के के साथ खून बहना बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको एक एक मिनट की कीमत को समझना होगा। ऐसे में बिल्कुल भी घर पर नहीं रुकना है, झाड़ फूंक में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और हॉस्पिटल में आगे का क्या प्रोसेस होता है इसे भी हम थोड़ा समझते हैं। जब ऐसी महिलाओं को, ऐसी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसे तुरंत ऑक्सीजन और ड्रिप लगाया जाता है, गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है, क्योंकि एक वजह तो इसका ये भी होता है ना कि गर्भाशय ढीले रह जाते हैं, तो गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है। अगर चोट की वजह से कोई हिस्सा अंदर फट गया है या फिर किसी भी वजह से हिस्सा कोई फट गया है तो अंदर फटे हुए हिस्से को सिला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती हुई है तो शुरुआत में ही उसके खून की जांच करा लेनी चाहिए, वो एनेमिक है या नहीं, यानी कि क्या उनमें खून की कमी है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। बाद में ब्लड ग्रुप अगर हमें पता होता है तो बाद में बहुत आसान होता है ऐसी माँ को खून चढ़ाना। और अगर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी माँ की जान खतरे में रहती है तो अंतिम स्थिति में माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन तक किया जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, क्या PPS से बचा जा सकता है। जी हाँ, बचा जा सकता है कुछ बातों का ध्यान रख के। सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिलीवरी हॉस्पिटल या फिर किसी ट्रेंड स्टाफ के पास ही हो। कई बार महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती हैं और घर में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई भी स्पेशलिस्ट वहाँ पर या फिर ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना ही बेहतर है। इसके साथ ही जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा के पैदा होते ही उस गर्भवती महिला के गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवाई दी जाती है। और इसके साथ ही जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद माँ को कम से कम 24 घंटे की निगरानी में रखना ज़रूरी है, और डॉक्टर जो भी बताते हैं उस चीज़ का पालन करना भी ज़रूरी है। गर्भावस्था में पूरा ANC चेकअप और खून की कमी का इलाज भी ज़रूरी होता है। डॉक्टर जो भी आपको चेकअप बता रहे हैं वो सारे चेकअप कराना ज़रूरी है, वो आगे माँ की जान को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही घर के लोग पहले से ही ट्रांसपोर्ट और खून की व्यवस्था सोच लें, यानी कि अगर अचानक

0: गर्भवती महिला को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और अगर पीपीएच की समस्या आ जाती है और खून चढ़ाने की नौबत आती है तो खून की व्यवस्था पहले से ही हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तब का हर मिनट कीमती होता है। और कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है। याद रखें कि प्रसव के बाद ज़्यादा खून बहना आम बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खून बहता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना, बड़े बड़े थक्के के साथ खून बहना, बार बार ये जो फ्लो है वो रुकना ही नहीं, ये एक इमरजेंसी स्थिति है। ऐसे में माँ की जान को खतरा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर ही माँ की जान बचाई जा सकती है। कोई भी गलती माँ की जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, और माता का विशेष ध्यान रखें। और आप इन सारी बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे, और उम्मीद है
1: उम्मीद
0: काम की रही होगी। हम मिलते हैं अगले लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। अभी के लिए नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
6: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
6: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है, और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है, जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
7: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
8: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
8: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
9: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत
0: कृषि

0: किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आरजे अनु और आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन, जो है आपका पसंदीदा एफएम स्टेशन। और फिलहाल यहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके हर सवाल के जवाब, यानी कि भाई आज का जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित सारे जवाब। तो भाई आप प्याज की बात कर लेते हैं आज, और प्याज जानते हैं ना कि इतना महंगा हो रहा है। फिलहाल अभी थोड़ा सा थमा है इसका ये दाम। और आपको बता दें, प्याज की खेती के लिए हर संभव तरीके अपनाते हैं हमारे किसान भाई, लेकिन अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कौन सा प्रभेद लगाना है, कब सिंचाई करना है, कितने दिनों तक सिंचाई करना है, जलवायु क्या होनी चाहिए। तो बहुत तरह के जो सवाल हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे किसान भाइयों के दिमाग में आते हैं। तो आज मैं बता दूँ कि आपके इस सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उद्यान विभाग सब्जी विभाग से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्याज की खेती के लिए जलवायु किस तरह की होनी चाहिए और इसके उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वह अधिकांश भाग जो है शाकाहारी है, इसलिए इस स्थिति में सब्जी का खेती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्याज में विटामिन सी, खनिज पदार्थ एवं लौह, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग कई तरह से करते हैं, जैसे मसाला के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, सलाद के रूप में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी खेती बिहार के प्रायः सभी भाग में या तो व्यावसायिक रूप में या किचन गार्डनिंग के रूप में अधिकांश भाग में करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसका उपयोग जो है भिन्न भिन्न तरह के व्यंजनों में किया जाता है, इसलिए इसका खेती जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी खेती के लिए सबसे पहले हमें इसके जलवायु कैसी चाहिए, उन्नत प्रभेद क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज शरद मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख सब्जी फसल है। पौधे के शुरू अवस्था में यानी कि प्रारंभिक अवस्था में जिस समय कि उसका शाकीय बढ़ाव होता है, उस समय 13 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए, और जिस समय कंद बनता है उस समय 20 से 25 डिग्री तापक्रम माने सेल्सियस तापक्रम उत्तम होता है। यदि शाकीय बढ़ाव के समय तापक्रम कम हो जाता है तो पौधे में फूल आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि औसत से ज़्यादा तापक्रम यानी 30 से डिग्री से अगर ऊपर तापक्रम हो जाता है तो सल कंद का बढ़ना बहुत धीमा हो जाता है, साइज बहुत छोटा हो जाता है, फसल बहुत जल्द तैयार हो जाता है, जिससे कि उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। अब है कि इसके लगाने के लिए हमें उन्नत प्रभेद का चुनाव करना जरूरी है, तो इसके खेती के लिए अधिक उपज के लिए उन्नत एवं अनुशंसित प्रभेदों का ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ उन्नत प्रभेद का नाम जैसे हम यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि पूसा रेड है, एग्री फाउंड लाइट रेड है, पूसा माधवी है, अर्का निकेतन है, अर्का कल्याण है, N53 इत्यादि प्रमुख हैं। बीज की प्राप्ति किसी विश्वसनीय स्रोतों जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, बिहार राज्य बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों या अधिकृत सब्जी बीज विक्रेता से ही प्राप्त कर लगाना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो उन्नत प्रभेद आपने बता दिए, लेकिन जब खेती की बात आती है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है किस तरह की मिट्टी में हम इसकी बुआई रोपाई और बीज की कितनी मात्रा है, उसकी आवश्यकता कितनी है। तो हम आपसे सम्मिलित तौर पर जानना चाहेंगे कि इसकी खेती के लिए यानी प्याज की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और बुआई रोपाई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
1: ऐसे तो प्याज की खेती सभी प्रकार के मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु

0: की बलुई दोमट मिट्टी विशेष उपयुक्त है। अधिक पैदावार के लिए मिट्टी में जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। अब है इसके बुआई का समय, तो रबी प्याज की बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक करना चाहिए। अभी प्याज की नर्सरी में बुआई करने का समय चल रहा है, अतः यथासंभव कोशिश करें कि 15 नवंबर तक इसकी बुआई नर्सरी में अवश्य कर दें। अब है नर्सरी, जब हम बीज नर्सरी में जब इसकी बुआई करते हैं तो वह जो है लगभग 7 से 8 सप्ताह के बीच में वह पौधा मुख्य खेत में लगाने लायक हो जाता है। तो इसकी रोपाई का समय जो है 15 दिसंबर से 15 जनवरी है। और ऐसे बहुत सारे किसान भाई 15 जनवरी के बाद भी लगाते हैं, तो अगर जिनका खेत खाली नहीं है, लेट लगा रहे हैं, तो हर हालत में कोशिश करें कि 15 फरवरी से आगे इसकी रोपाई नहीं करें। अगर 15 फरवरी के बाद अगर रोपाई करते हैं तो इसके उपज में भारी कमी आएगी। इसलिए यथासंभव कोशिश करें कि हम इसकी रोपाई जो है 15 जनवरी तक कर दें। अब इसके बुआई के लिए 1 हेक्टेयर खेत में अगर प्याज लगाना है तो उसके लिए आपको 8 से 10 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी, अगर उच्च क्वालिटी का बीज है तो।
1: अच्छा, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने जाना कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और फिलहाल हम जानते हैं डॉक्टर साहब कि जब प्याज की खेती होती है तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि नर्सरी में बीज बोने के बाद बिचड़ा तैयार करना। तो बिचड़ा तैयार करने के बारे में कुछ बताएं।
0: ऐसे तो लोग कुछ जगहों पर लोग प्याज की खेती छिटवा विधि से भी करते हैं, लेकिन वह कोई उत्तम तरीका नहीं है। इसका सबसे उत्तम तरीका है कि प्याज की खेती के लिए सबसे पहले हम नर्सरी में बीज बोकर उसका बिचड़ा तैयार करते हैं। 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए लगभग 500 से 600 स्क्वायर मीटर नर्सरी की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर हमको 1 हेक्टेयर में प्याज लगानी है तो उसके लिए 500 से 600 स्क्वायर मीटर हमको नर्सरी की आवश्यकता पड़ेगी।
1: जी।
0: नर्सरी तैयार करने हेतु खेत को अच्छी तरह से जोत कर तैयार कर लें, तथा उसमें ईंट होगा, पत्थर का टुकड़ा होगा, पौधे के अवशेष वगैरह होगा, उसको निकाल कर बाहर निकाल लें। पाटा चलाकर खेत को समतल बना लें, तथा छोटी छोटी क्यारियां एवं सिंचाई का नाला बना लें। उसके बाद प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 से 3 केजी गोबर की सरी खाद, 25 से 30 ग्राम DAP तथा 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति क्यारी में डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। यहाँ जो हम बताए हैं कि 1 वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी अगर नर्सरी 1 वर्ग मीटर का है, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, तो उसमें 2 से 3 केजी गोबर का खाद देना है, 25 से 30 ग्राम DAP डालना है, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालना है। उस हिसाब से जितना बड़ा क्यारी है उस हिसाब से आप अभी बताए गए खाद की मात्रा डाल दें। बुआई के समय ध्यान रखें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी अवश्य हो। बुआई के पूर्व बीज को फफूंदी नाशी दवा से उपचारित जरूर करें। इसके लिए 1 केजी बीज में, अगर प्याज का 1 केजी बीज है तो उसमें 2 से 3 ग्राम फफूंदी नाशी, जैसे थीरम है, कैप्टान है, दवा को अच्छी तरह मिला लें। यानी 1 केजी बीज है प्याज का तो उसमें 2 से 3 ग्राम दवा थीरम या कैप्टान को उसमें मिला लें। कभी कभी शिकायत होता है कि पौधा नर्सरी में ही गलने लगता है, तो अगर इस तरह का उस खेत में शिकायत हो तो उसके लिए, इस बीमारी को आद्र गलन कहते हैं, तो अगर इस तरह का शिकायत हो तो नर्सरी को भी आप उपचारित कर लें। इसके लिए बुआई के पूर्व अभी जो बताए हैं दवा थीरम या कैप्टान 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर झरना से

0: नर्सरी को सिंचाई कर लें। अगर इस तरह से सिंचाई कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमको जो आद्र गलन का जो बीमारी है उसके लगने की संभावना नहीं रहती है। उसके बाद जो है बीज बोने के बाद आधा भाग कंपोस्ट हुआ, आधा भाग मिट्टी हुआ मिलाकर बीज को अच्छी तरह ढक दें। उसके बाद नर्सरी को पुआल है या सूखा घास वगैरह है उससे ढक दें ताकि नर्सरी में नमी एवं तापक्रम बीज जमाव हेतु बना रहे। यदि बीज बोने के बाद खेत में अगर नज़र आए, अगर लगे कि नहीं इसमें नमी की कमी है, तो पुआल या घास से ढके हुए अवस्था में आप झरना से उसकी सिंचाई करें। अगर अब जब बीज का जमाव हो जाता है तो जमाव के बाद पुआल वगैरह जो भी है उसे हटा दें तथा झरना से हल्की सिंचाई करें। जब बीज जम जाता है तो 5-6 दिन के बाद 2 ग्राम बेविस्टिन दवा 1 लीटर पानी में घोलकर बिचड़ा पर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार नर्सरी को सिंचाई करते रहें। इस प्रकार से लगभग बुआई के 7-8 सप्ताह बाद बिचड़ा रोपने लायक तैयार हो जाएगा।
1: तो किसान भाइयों, आपने डॉक्टर साहब से सुना विस्तार में कि बिचड़े की तैयारी कैसी होनी चाहिए, और जहाँ तक रोपाई की बात है तो वो भी जानेंगे, और साथ में ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब हम कि खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि बिचड़े की रोपाई कैसे करें हम।
0: बिचड़े की रोपाई है तो खेत को अच्छे तरह तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, जिसको कि मोल्ड बोल प्लाव कहते हैं, उससे पहली जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या देसी हल से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलावें ताकि खेत समतल एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय लगभग 250 क्विंटल गोबर की सरी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी में मिला दें। उसके बाद सुविधानुसार छोटी छोटी क्यारियां एवं सिंचाई हेतु नाला बना लें। रोपाई के एक दिन पूर्व 200 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं यूज करते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के जगह 100 केजी यूरिया। उसके बाद आपको 350 केजी सिंगल सुपर फास्फेट तथा 125 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से क्यारी में डालकर मिला दें तथा क्यारियों को समतल बना लें तथा क्यारियों की सिंचाई कर दें। सिंचाई के एक दिन बाद बिचड़े की रुपाई उचित दूरी पर करें। रुपाई है तो कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बिचड़ा रोपने के पूर्व शीर्ष भाग में से लगभग 25% काटकर हटा दें ताकि रोपे गए बिचड़े को स्थापित होने में मदद मिलता है। रोपाई के 5-6 दिन बाद पुनः एक बार हल्की सिंचाई करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बारी आती है खाद की, तो खाद की जो मात्रा है हम कैसे दें, कब दें, अगर वो सही समय पर हम अपने फसलों में देते हैं, तो यहाँ पर प्याज की खेती की बात हो रही है, तो जो है वो अच्छे तरीके से इनकी फसलों में बढ़वार होती है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम खाद कितना दें और कब दें।
0: प्याज की फसल में उचित समय पर उर्वरक का प्रयोग करना अति आवश्यक है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब उर्वरक को हम लोग नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की दूसरी के पहली किस्त चूँकि हम रुपाई के पूर्व ही खेत में डाल चुके हैं, इसलिए दूसरी किस्त जब नाइट्रोजन के डालेंगे तो बुआई के 30 दिन बाद नाइट्रोजन की दूसरी किस्त डालेंगे। तीसरी किस्त जो है रोपाई के 60 दिन के बाद करेंगे। इसके लिए प्रत्येक बार यानी दूसरी और तीसरी किस्त के लिए 200 केजी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं प्रयोग करते हैं तो 100 केजी यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में

0: समान रूप से छिटक दें। यदि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो खाद डालने के बाद सिंचाई करना आवश्यक है, परंतु यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद करना चाहिए। यानी सिंचाई कर दें तब यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करें, यानी कि उसकी छिड़काव करें, यानी उसे छिटक दें समान रूप से। यूरिया डालने के पहले खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि किसान भाई एक ही खेत में प्रति वर्ष प्याज लगाते हैं। शुरू में तो उपज अच्छी मिलती है, परंतु कुछ वर्षों के बाद उपज में कमी मिलने लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि लगातार एक ही खेत में प्याज उगाने से खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूरा करना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक दो तीन वर्षों पर, यानी दो तीन वर्ष प्याज की खेती कर रहे हैं तो एक बार कम से कम उसमें जो है 20 से 25 केजी जिंक सल्फेट, 10 से 15 केजी बोरेक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत के अंतिम जुताई के समय ही खेत में डालकर मिला लें, ताकि पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि खाद के बाद जो है वो सिंचाई करनी चाहिए, तो हम जानना चाहेंगे कि कब और कितने दिनों पर सिंचाई करें हम?
0: प्याज में उचित समय पर सिंचाई करना आवश्यक है। हल्की मिट्टी वाले खेत को, जो जिस खेत की मिट्टी हल्की है उसे 4-5 दिनों के अंतराल पर, तथा जिस खेत की मिट्टी भारी है जैसे कि केवाल मिट्टी वगैरह है उसमें जो है 6-7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। सल्क कंद बनते समय, यानी कि जिस समय प्याज का कंद बनना शुरू हो जाता है उस समय सिंचाई में कमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सल्क कंद का बढ़वार जो है बहुत कम जाता है, जिससे उपज पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सल्क कंद पूर्ण होने पर सिंचाई बंद कर दें, यानी कि प्याज उखाड़ने के 10-15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। कभी कभी सल्क कंद बनते समय कुछ पौधों में फूल आ जाते हैं, जिसे तोड़ देना चाहिए, अन्यथा प्याज की गुणवत्ता खराब हो जाती है तथा ऐसे प्याज का बाजार भाव भी बहुत कम मिलता है।
1: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर प्याज में अब बीमारियों की बात कर लेते हैं, और हमारे जितने किसान भाई मेहनत करते हैं तो कई बार कीट के प्रकोप से जो बीमारियाँ हैं वो फैल जाती हैं प्याज के इन पौधों में, तो इनके नियंत्रण के लिए हम क्या करें?
0: इसमें मुख्य रूप से थ्रिप्स नामक कीड़ा का प्रकोप होता है। प्याज का यह बहुत ही प्रमुख कीड़ा है, इससे प्याज का बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। तो इस कीट से बचाव के लिए कीटनाशी दवा जैसे मोनोक्रोटोफास है, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में, या इमीडा क्लोरोपीड कीटनाशी दवा है उसका 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिनों के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करें। बीमारियों में पर्पल ब्लाउ जिसे बैंगनी धब्बा कहते हैं, तथा एस्टेमफिलियम झुलसा रोग लगता है, तो इन दोनों रोगों से बचाव के लिए मेनकोज दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। प्याज में छिड़काव करने में ध्यान यही रखना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज का पत्ता खड़ा होता है, चिकना होता है, तो कोई भी दवा जब हम स्प्रे करते हैं तो दवा जो है उसके पत्ती पर सही ढंग से टिक नहीं पाता है, जिससे कि हमें वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए घोल में जो है हम कोई भी किसी तरह का चिपकने वाला पदार्थ जिसको स्टिकर करके बाज़ार में मिलता है, तो स्टिकर जैसे सेंडोविट है, टिपाल है, और इसी तरह से कई तरह का मार्केट में मिलता है, तो उसका 0.5 ml 1 लीटर घोल में डाल कर ही स्प्रे करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो दवा छींटे हैं उसका वांछित लाभ आपको मिल पाएगा।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे अंत में इतनी मेहनत करने के बाद हमारे किसान भाई का वक्त आता है कि प्याज की खुदाई करें और इसका भंडारण करें और इसका इसे जो है वो जो है मार्केट तक ले जाएं और मुनाफा पाएं। तो हम जानना चाहेंगे कि अंत में

0: प्याज की खुदाई और भंडारण कैसे कर सकते हैं?
1: प्याज की फसल रोपाई के बाद यानी जब हम बिचड़ा रोपते हैं तो 100 से 120 दिन में वो तैयार हो जाती है।
0: जी जी।
1: प्याज तैयार मेरा हुआ कि नहीं हुआ उसकी परिपक्वता की पहचान जो है पौधों को पत्तियां देखकर कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जब पत्तियां का ऊपरी भाग लगभग 60% सूख जाती है तो हम समझते हैं कि अब प्याज उखाड़ने लायक हो गया है। सल्क कंदों को जब जमीन से बाहर निकालने के बाद उसके गर्दन के पास से 2 सेंटीमीटर छोड़कर यानी कि 2 सेंटीमीटर गर्दन छोड़कर शेष सभी पत्तियों को काटकर अलग कर देते हैं। उसके बाद कटे फटे कुछ प्याज जुड़वा होगा, कुछ प्याज का बहुत मोटा गर्दन होगा, तो ये सब को हम अलग कर देते हैं क्योंकि ये भंडारण में खराब हो जाती है। तो इस तरह का प्याज है तो उसको आप जो है यथाशीघ्र जिस दाम में बिकता है उसे बाजार में बेच दें। उसके बाद कंदों को छायादार एवं हवादार जगह में 10-15 दिनों तक सुखाने के बाद ही भंडारण करना चाहिए। भंडारण वैसी जगह में करें जो छायादार हो, हवादार हो एवं सूखी हो। भंडारित प्याज को 20 से 25 दिन के अंतराल पर पलटते रहें। पलटने के समय कुछ प्याज आपको सड़ा हुआ मिलेगा, कुछ अंकुरित होगा, तो ये सब को पलटते समय चुन लेना चाहिए और इसको भंडारण से अलग कर देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो प्याज के वैज्ञानिक खेती पर मुख्य रूप से ये सब अगर हम करते हैं तो आशा के अनुसार हम उपज प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और किसान भाइयों, आपको तो पूरी जानकारी मिल ही चुकी होगी क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो आशा करती हूँ कि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और जब आप प्याज की खेती करने जाएंगे तो डॉक्टर साहब की बातों को दिमाग में ज़रूर लाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही और अगले दिन अगले विषय के साथ आप सभी से मुलाकातें होंगी। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और करते रहें यूं ही खेती और स्वस्थ खेती। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त समावेशी

0: आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

0: जितनी भी बातें हैं वो बता पाएं। तो आज एक ऐसी ही खास विषय हम लेकर आए हैं और वो है जैविक खेती। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जैविक खेती पर और बहुत सारी चर्चाएं होंगी इस पर, क्यों ज़रूरी है ये, भारत में जैविक खेती की क्या संभावनाएं हैं, किस उद्देश्य से हमें जैविक खेती करनी चाहिए। तो इन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच हैं कृष्णकांत दुबे, और मैं आपको बता दूं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम सहायक हैं और आज पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, धन्यवाद आपका। नमस्कार किसान भाइयों, हम आज आपको बताएंगे कि जैविक खेती में किस किस तरह से काम किया जा सकता है और भारत में जैविक खेती की क्या क्या संभावनाएं हैं, कितने लोग जैविक खेती कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हमारे देश में खाद्यान्न उपज बढ़ाने के लिए पिछले कई दशकों से रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है और आंकड़े बताते हैं कि सन 1950 में रासायनिक उर्वरकों की खपत 0.07 मिलियन टन थी, जो कि सन 2000-2001 में बढ़कर 16.71 मिलियन टन पहुंच गई। इसका सीधा सा अर्थ है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग 1 किलोग्राम से लेकर 96 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष बढ़ गया है और लगातार बढ़ते हुए 2012-13 में यह 32.4 मिलियन टन हो गया है। किसान भाइयों, खेती में अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से, या यूँ कहें कि रासायनिक खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी, फसल उत्पादन में अस्थिरता, खेती में अधिक लागत बढ़ने के साथ साथ कीट एवं रोगों का बार बार संक्रमण हो रहा है। कीटनाशकों एवं उर्वरकों के अधिक से अधिक एवं असंतुलित उपयोग से हमारी खाद्य कड़ी में हानिकारक कारकों का प्रवेश हो गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जैविक खेती इन सभी समस्याओं का हल कर सकती है, क्योंकि यह प्रणाली मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाए रखने के साथ साथ पर्यावरण स्थिरता एवं प्राकृतिक चक्र अपनाकर कीटों में प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है।
0: जी, तो ये तो हमने जाना कि जैविक खेती की क्या आवश्यकता है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कृष्णकांत दुबे सर ने बताया आपको, और अब बात करते हैं भारत में जैविक खेती की संभावनाओं के बारे में, तो उस पर थोड़ी जानकारी दें सर।
1: जी जी, जैविक खेती करने वाले लगभग 172 देशों में भारत की एक अलग ही पहचान है। हमारे देश में 6,50,000 जैविक उत्पादक किसान हैं और 700 प्रसंस्करण इकाइयां कार्य कर रही हैं एवं इसके साथ साथ 670 निर्यातक हैं, जो कि हमारे यहाँ का अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद, जैविक उत्पाद देश विदेश में उपलब्ध करा रही हैं। हमारे देश में वर्ष 2015-16 में 1.35 मिलियन टन प्रमाणित जैविक उत्पादों का उत्पादन किया गया, जिसमें सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन, अनाज और बाजरा, औषधीय पौधे, चाय, कॉफ़ी, फल एवं सब्जियां आदि शामिल हैं। अभी हमारे देश में लगभग 3.71 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक उत्पादन किया जा रहा है।
0: जी, तो यहाँ पर अभी हमारे किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि आपने इसकी आवश्यकता के बारे में जाना, संभावनाएं भारत में क्या हैं उनके बारे में जाना, तो अब ज़रूरी होता है कि जैविक खेती क्या है उसके बारे में जानें और इसे हम क्यों करें, क्यों ज़रूरी है ये, इसको जानें, तो सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: जी बिल्कुल, जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का कम से कम या बिना उपयोग किए फसल उत्पादन लिया जा सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के साथ साथ आसपास का वातावरण भी स्वच्छ एवं संतुलित रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाया जाए, खाद्य पदार्थों में रासायनिक तत्वों के उपयोग को रोका जाए, फसलों को ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाएँ जो कि मिट्टी और फसलों में अघुलनशील हों और सूक्ष्म जीवों के लिए फायदेमंद हों, जैविक पदार्थों की रिसाइकलिंग कराना, जैसे आप लोग जानते होंगे वर्मी कंपोस्टिंग, नाडेप कंपोस्ट, इन सभी से केंचुए की सहायता से हम लोग जो कृषि अवशेष है उससे खाद बनाकर पौधों को उपलब्ध करा सकते हैं।
0: तो अब ये तो आप सभी ने जाना कि जैविक खेती क्या है, आप किस तरीके से जैविक खेती कर सकते हैं, तो ज़रूरी होता है कि इनके लाभ पर भी हम थोड़ी प्रकाश डालें, तो सर इसके बारे में बताएं और ख़ासतौर पर हमारे किसान भाइयों को क्या फ़ायदा मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, वैसे तो जैविक खेती करने के अनेक लाभ हैं, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि पहला है कि किसानों को होने वाले फायदे, इसमें जो ज़मीन है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है, फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है।

0: सिंचाई के अंतराल में वृद्धि या मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, फसल लागत में कमी होती है इस तरह, क्योंकि हम लोग जो भी महंगे उर्वरक हैं, महंगे कीटनाशी हैं, महंगे खरपतवार नाशी यूज़ करते हैं, उन सबको हमको इसमें नहीं यूज़ करना है, तो हमारा जो वहाँ पे लागत है वो कम हो गई। और दूसरा है कि पर्यावरण को होने वाले लाभ, एक हम लोगों ने बताया कि किसानों को होने वाले फ़ायदे, दूसरा पर्यावरण को होने वाले लाभ, इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग नहीं करने से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण में कमी हो जाती है
1: जी।
0: भूमि में ऊपरी एवं भूगर्भीय जल स्तर का जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। कृषि अवशेषों का उपयोग जैविक खाद बनाने से वातावरण स्वच्छ रहता है, साथ ही हमें अवशेष जो फसल अवशेष हैं उससे जैविक खाद के रूप में एक अच्छी पौष्टिक खाद उपलब्ध हो जाती है। जैविक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग ना होने से मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीव जो कि हमारे फसल की जड़ों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य एवं वायु संचरण अच्छा रहता है
1: जी। तो इस प्रकार आपने जाना कि अगर आप जैविक खेती करते हैं किसान भाई, तो लागत आपको कम पड़ती है और साथ ही पर्यावरण को भी आप स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। सर, जैविक उर्वरक का प्रयोग हम कैसे करें, उसकी थोड़ी जानकारी दें।
0: जी बिल्कुल, देखिए जैविक उर्वरकों में हमारे पास दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर हम लोग प्रयोग करते हैं, धान्य फसलों में एजोटोबैक्टर है, एजो स्पायरेलम है, पीएसबी है और स्यूडोमोनास, इसका उपयोग किया जाता है। और जैव उर्वरकों का जो एक दर है 5 मिलीलीटर, किसान भाइयों 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करते हैं और उसके बाद हम इसमें इसके बाद हम लोग खेत में बीज की बुआई करते हैं
1: जी। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आपने जानी है जैविक खेती के फायदे के बारे में, आप कैसे करें जैविक खेती उसके बारे में, साथ ही क्यों ज़रूरी है ये। तो अंत में सर आप कुछ संदेश किसान भाइयों को देना चाहेंगे इससे जुड़े कुछ तो ज़रूर दें।
0: जी बिल्कुल, जैसा कि आज के समय की मांग है कि हम लोग अपनी खेती के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहते हैं
1: जी,
0: इसके लिए हम खेती एवं उससे जुड़े अन्य उत्पादों को रसायन मुक्त बनाने पर जोर देना होगा हम लोगों को, साथ ही अपनाना भी होगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण की शुद्धता, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और जैविक खेती की अवधारणा को हम लोग को सार्थक करने में बल मिलेगा, मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप जैविक खेती करते हैं किसान भाई तो उपज भी आपकी अच्छी होती है, आप जो आपके मिट्टी है वो भी स्वस्थ रहते हैं, पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है और इस प्रकार से जो कई दुष्प्रभाव हैं उससे आप अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर 90.8 MHz पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
2: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
6: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
7: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
8: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं,
0: जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
8: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: तो इसका हल क्या है?
8: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
7: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कहीं जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
9: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर

बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
0: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक

0: कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे,
2: हाँ,
0: अरे रोने लगी। अरे सुन तो। अच्छा अच्छा सर, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कल मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
2: क्या भूल बैठकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे।

0: ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
2: अरे जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुप्पा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: अरे वो तो सपना था। सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो।

0: लटका रखा है बाप बेटे ने। पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: गहना लूंगी मैं तो, साड़ी लूंगी गहना गरिया लूंगी मैं तो, साड़ी लूंगी बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो, साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते
1: हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं।

0: ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
1: अरे बात तो तुम्हारी सच है। तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
2: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
0: ये
2: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
0: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
2: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
0: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
2: क्यों?
0: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
2: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं।
0: ये देखो ये पेड़
2: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे,
2: चलो इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
2: क्या हुआ चुप्पा?
0: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया।
2: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
0: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
0: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
2: हाँ।
0: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
2: पर नुकसान भी क्या है?
0: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
2: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
0: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
2: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
0: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
0: हाँ बिल्कुल,
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
0: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तो रहने दे इस पेड़ को तो।
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या?
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे है।
0: लेकिन अम्मा
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे
2: तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझी को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी। मगर ऐसे नहीं।
3: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
3: चल। हाँ बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी? तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर,

0: इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
1: हाँ?
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
6: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग। टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
9: जी
8: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
9: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
8: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: अटेंशन अटेंशन

0: attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। किसान भाइयों और किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच नए विषय के साथ, नई हमारी जो आज की खास चर्चा करने की बातें हैं उसके साथ। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर मछली जीरा उत्पादन तकनीक। किसान भाइयों, देखा गया है कि अक्सर मछली का जो उत्पादन है वो बंगाल में ज़्यादा किया जाता है और वहाँ पर नई नई तकनीक भी अपनाए जाते हैं, लेकिन बात करें अपने क्षेत्र की यानी कि बिहार की, तो यहाँ पर हमारे जो पशुपालक भाई हैं या फिर किसान भाई हैं वो अच्छी तकनीक के साथ मछली जीरा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप एक अच्छे तकनीक को सीखें, उसे जानें, समझें और उसके बाद उसे अपनाएं, ताकि आप एक अच्छे बड़े पैमाने पर इसे अपने आय का स्रोत बनाएं और अपनी जीवन यापिका अच्छे ढंग से कर पाएं। फिलहाल इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं NZ हुदा सर और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पशु विज्ञान केवी के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मछली जीरा उत्पादन क्या है।
5: किसान भाइयों, मछली जीरा उत्पादन आज हम लोग लगातार बंगाल और उसके अगल बगल के इलाकों में हम लोग मछली जीरा के लिए निर्भर करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में बिहार में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है मछली जीरा उत्पादन के भी मामले में, लेकिन अभी भी अपेक्षाकृत जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। और हम लोग सालों भर मछली जीरा उत्पादन और या फिर जीरा संचयन को हम लोग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मछली जीरा उत्पादन एक बड़ा ही अच्छा और आर्थिक रूप से किसानों को सबल बनाने और साथ में बिहार में जीरा उत्पादन के साथ साथ जीरा और मछली बीज की उपलब्धता बढ़ाने का एक बड़ा ही अच्छा तकनीक है, जिसको आप बड़ी सुगमता से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर या फिर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज हैं, सीफे कोलकाता हैं, मुंबई हैं, उड़ीसा है, आप कहीं से भी, आपको जहां से लगे आप वहां से तकनीकी रूप से प्रशिक्षण लेकर आप वहां से ये तकनीकी सीख सकते हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं। हम लोग दो तरीके से हम लोग आजकल देख रहे होंगे कि मछली बीज उत्पादन दो, एक तो पोर्टेबल चाइनाज कार्प हैचरी आती है और दूसरा हम लोग देखते होंगे कि एक सीमेंटेड पूरी हैचरी का निर्माण करते हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। आप सबसे पहली बात होती है किस मछली से आप मछली का जीरा या फिर बच्चा जो हम लोग निकालना चाहते हैं वो करें। तो हमारे पास मुख्य रूप से छः प्रजाति हैं जो बिहार में और अन्य जगहों पर प्रचलित हैं, जिसका हम लोग पालन करते हैं। रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प, तीन हमारे

0: इंडिजिनस कार्प है और 3 हमारी एग्जॉटिक कार्प है। आप देखेंगे तो इसमें दो चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हर मछली से अंडा निकले ये मुश्किल होता है जब तक कि उसकी उम्र ना हो। तो जो हमारा रोहू है, नैनी है, कम से कम 1.5 से 2 साल का होना चाहिए। दूसरा कतला है तो 2 साल से 2.5 साल के बीच का होना चाहिए। और जिस मछली से हम लोग बच्चा निकालते हैं उसको हम लोग ब्रूडर मछलियाँ कहते हैं। जब हम सिर्फ मछली बीज उत्पादन की बात करते हैं तो आजकल तकनीकी रूप से सबसे बेहतर क्या होता है कि आपको थोड़ा सुनकर आश्चर्य लगेगा कि हम लोग नर मछलियों का पालन एक जगह करते हैं और मादा मछलियों का पालन एक जगह करते हैं। आप नर और मादा मछलियों की पहचान बहुत ही सरल है। आप जो मछली को पकड़ते हैं तो आप देखिए जब उसके गलफर के नीचे जो एक फिन होता है उसको हम लोग पेक्टोरल फिन कहते हैं। आप अपनी उंगली को उस पेक्टोरल फिन पर फेरेंगे तो जिसमें बालू के जैसा रुखना मिले तो वो नर मछली होगी और जिसमें बिल्कुल स्मूथ चिकना मिले वो मादा मछली होगी। और हम लोग जब जो ऑर्गेनाइज्ड ब्रूडिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मछली बीज उत्पादन की बात करते हैं तो हम बिल्कुल प्रोफेशनली हम लोग नर मछलियों का पालन अलग करते हैं, मादा मछलियों का पालन अलग करते हैं। और जब हमारी, मैंने जैसे पहले बताया कि एज निश्चित है, और ये जो मेरी 6 मेजर कार्प है, रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और जो है, तो इसको ये आपके मई के लास्ट से और अगस्त 15 तक इससे हम बच्चे निकाल सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमको जब हमारी सीमेंटेड हैचरी तैयार है, आप कहीं विजिट करेंगे जहां मछली बीज उत्पादन का कार्यक्रम चल रहा होगा तो आप देख लेंगे, या फिर उसी का एक चाइना के द्वारा एक पोर्टेबल कार्प हैचरी भी बनाई जाती है जो छोटे स्तर पर अपनी इसके लिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा जब जिस दिन भी हम मछली बीज उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंथेटिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और पहले पुरानी पद्धति थी कि हम लोग मछली के सिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग निकालते थे और आज भी बंगाल में इस विधि से मछली का अंडा निकाला जाता है। तो पिट्यूटरी हार्मोन मार्केट में बंगाल में लगभग 1 ग्लैंड जो छोटा सा मटर के दाने के बराबर होता है, 5 रुपए से 6 रुपए के बीच में देता है, हम लोग उसको पहले खरीद लेते थे और उसको बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर में ट्राइचुरेट करके मोटर एंड पिस्टल से, फिर उसको फिल्टर पेपर पर छान कर, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूग करके हम लोग उसकी सुई इंजेक्शन तैयार करते थे और वो हम लोग मछलियों को देते थे। लेकिन आजकल बड़ी सुलभता से सिंथेटिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, OFFH और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो मिल रहे हैं। तो प्रारंभिक जिस दिन हम मछली बीज जीरा उत्पादन का कार्य करते हैं तो उस दिन हम लोग करते हैं कि सुबह में हम लोग मछलियों को निकालते हैं जाल से और हम लोग नर और मादा को एक साथ निकालने के बाद एक साथ बड़े इंक्यूबेशन टैंक में डालते हैं और सुबह में उसको वहाँ पर लगातार पानी चलता रहता है और फिर शाम में 5 बजे हम उन मछलियों को उससे निकालते हैं और बारी बारी से उसके वजन के हिसाब से मेल को 0.25 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्ट करते हैं सिंथेटिक गोनेडोट्रोपिन और फीमेल को 0.5 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग इंजेक्शन देते हैं और फिर दोनों को उस पूल में छोड़ देते हैं। लगभग रात के 12 बजे के बाद वो मछली अंडे देने शुरू कर देती है और स्पर्म का मेल जो है उसके पीछे पीछे स्पर्म रिलीज करते हैं और वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और अंडा का एक कलेक्शन चैम्बर होता है, वहाँ अंडे एकत्रित होते हैं, वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ होता है। और मॉर्निंग में जो हमारा हैचिंग पूल है वहाँ पर हम लोग उस अंडे को निकाल कर, आपको देखा होगा कुछ किसान भाइयों ने या नहीं देखा होगा तो देखेंगे कि एक बड़ा सा गोल 11 फीट डायमीटर का जो जितना प्रोडक्शन चाहते हैं उस हिसाब से वो इंक्यूबेशन पूल बनता है, वहाँ उस अंडे को ट्रांसफ़र करते हैं और लगभग 72 घंटे तक उसमें बिल्कुल गोल गोल देखेंगे पानी घूमेगा और 72 घंटे के अंदर उससे मछली के अंडे जो साबूदाना जो फूल जाता है आपने देखा होगा, मैं नट सेल में बता दूं, वैसे ही उतने ही बड़े अंडे होते हैं और उससे बच्चे, बड़े छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं और 72 घंटे में वो अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो रेडी हो जाते हैं।

जहाँ से ले जाते हैं, और छोटे छोटे नर्सरी तालाब। तालाब दो तरीके का होता है, जिसमें एक आप बड़े मछलियाँ करते हैं और दूसरा एक छोटा नर्सरी तालाब। और मैं तो कहूँगा कि अगर मछली उत्पादन आप करना चाहते हैं तो आपके पास बड़ा तालाब के साथ साथ छोटा तालाब, दो नर्सरी तालाब होना ही होना चाहिए, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि सालों भर आपका मछली बीज नहीं उपलब्ध रहता है। तो जो हमारे बहुत सारे किसान हैं, हमेशा देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की बात की, इस विधि से बच्चे बर्दार करने की बात की, तो आप इसको बड़े तालाब में ले जाके रख देंगे इस जीरा को, तो फिर वही बात हो जाएगी जो सर्वाइवल रेट आता है जीरे का। आपने एक लीटर बच्चा हम लोग यहाँ पर 1500 रुपये में देते हैं, जिसमें लगभग 200,000 बच्चे होते हैं। आप उसको सीधे बड़े तालाब में ले जाएंगे जहाँ मेढक होगा, जहाँ खाने प्याव वाली मछली होगी, नैनी होगी, कतला होगा, या फिर बत्तख जाएंगे, तो वो सर्वाइवल रेट आप फिर लोगों को शिकायत करेंगे, कह रहे मैंने इतना मछली का जीरा ला के डाला और मुझे नहीं मिला। तो सबसे पहले आप क्या करें कि एक नर्सरी पॉन्ड में उसको नर्चर कर लें, उसको पाल लें। उसका बड़ा सरल तरीका, आप 1.5 मीटर के आसपास मात्र का गड्ढा कर लें, और आपको कल मछली जीरा यहाँ से ले जाना है तो आप उसमें 1 फीट पानी भर दें और मछली जीरा को वहाँ ले जा कर के रखें। और मछली जीरा जैसे आप ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका खाना क्या है, तो खाना ये इम्पोर्टेंट। और उस गड्ढे में आप कोशिश करिए कि फ्रेश पानी हमेशा लगातार जाते रहे, उसमें एक छोटा सा पाइप जोड़ दें, लगातार उसमें फ्रेश पानी जाता रहे, जिससे कि वो पानी गर्म ना हो। आप 2-3 अंडा 30x30 फीट का आप एक गड्ढा नर्सरी पॉन्ड बना सकते हैं, उसमें 2 लीटर स्पून आप ले जाके रख दें, लगभग 400,000 बच्चे उसमें हो जाते हैं। आप उसमें क्या करें कि 2 अंडे को एक कटोरी में फोल्ड के रख दें, उसके बाद थोड़ा सा मैदा ले लें और उस मैदा को उसमें मिक्स कर दें। और उससे भी जो सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि उस नर्सरी पाउंड को आप मच्छरदानी के एक पल्ले से चारों तरफ से आप सब्जियों के बागान को बचाने के लिए करते हैं, उसको ज़रूर कर दें। उससे क्या होता है कि छोटे नर्सरी तालाब में कुछ मेढक जा करके अंडे दे देगी, मेढक अंडे दे देगी, तो आपने देखा होगा कि पानी में मेढक नहीं रहता है, वो सिर्फ बच्चे का टैडपोल बढ़ने के लिए वो होता है, और वो उसका फीड कॉम्पिटिटर है। आप जो खाना देंगे वो मेढक खा जाएगा, वो आप फिर नहीं होगा। तो ये जो आप जो प्रबंध करेंगे तो इससे सांप वाँप हो या मेढक आपके उस नर्सरी तालाब में नहीं जा पाएंगे। और इसमें आप डालेंगे एक आधे पार्ट में, आप उस जो घोल मैंने बताया अंडे और मैदे का आधे पार्ट में दे दीजिए, दूसरे दिन दूसरे समय दूसरे पार्ट में दे दीजिए, और आप देखेंगे कि बड़ी खूबसूरती से छोटा छोटा बच्चा बिल्कुल आपको कोने में तैरता हुआ मिलेगा। दूसरे और तीसरे दिन से 100 ग्राम सरसों की खली एग्रीमीन फोर्ट मिनरल मिक्सचर 20 ग्राम 25 ग्राम उसमें मिला करके फुला देना है, और फिर एक साइड कहीं तालाब में रख दीजिए उसी नर्सरी पाउंड में। आप देखेंगे कि सारे मछली के बच्चे वहीं आके खा रहे हैं। आप यकीन करिए नहीं कर पाएंगे कि 30x30 के तालाब में अगर 3,000 रुपये का वो मछली जीरा आप ले जाके वहाँ डाल देते हैं, तो आप जानते हैं कि 16 से 17 दिन के बाद जो मछली का जीरा जो अवस्था में परिणित होता है उसको हम लोग फ्राई स्टेज कहते हैं, और 32 से 36 दिन में उसको हम लोग अंगुलिका कहते हैं। तो आपने 200,000 बच्चा डाला, और अगर आप 30-35% भी बचा लेते हैं तो ये नेशनल एवरेज 20-22% का है बचने का इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में। लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने बताया आप अगर उस चीज़ को करते हैं तो आप 30-35% तक बच्चे को बचा लेंगे, और लगभग 32 दिनों के अंदर आप 3,000 रुपये का बच्चे की कीमत जब वो फ्राई में बदल जाएगा, आपके फिंगरलिंग अंगुलिका में बदल जाएगा, तो लगभग 30,000 के बच्चे वो आप एक 30x30 के गड्ढे से बेच सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मछली जीरा उत्पादन में है कि ये मछली उत्पादन को जोड़ता है। आप हमेशा तालाब में कोशिश करिए कि कभी छोटा नहीं मछली डाले, हाफ ईयरलिंग को डाले। तो असमय जब किसान क्या करते हैं कि मछली जीरा के अभाव में साल में एक फसल लेते हैं, साल में एक फसल का मतलब है एक बार उत्पादन मछली का लेते हैं, लेकिन ये छोटे तालाब में आपकी मछलियाँ रहेंगी तो 6 महीना में जब आप खाना ढंग से देंगे तो 6 महीना में 1 क्रॉप हार्वेस्ट कर दूसरा बच्चा डाल देंगे। आप यकीन माने कि पूरे सबसे ज़्यादा इस बीच में जो मछली जीरा उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है वो दरभंगा है, मधुबनी है, और एक एक किसान 3 महीने
मई से लेकर

0: जुलाई अगस्त सितंबर तक में लगभग 20-20 लाख 25-25 लाख कोई किसान अपनी क्षमता के अनुरूप इतनी इतनी की आमदनी कर रहे हैं। और अभी तो बिहार में बहुत संभावनाएं हैं, अभी हम लोग सैचुरेशन की तरफ जाना है, और जिस प्रगति से हम लोग बढ़ रहे हैं, आप सही तकनीक को अपनाएंगे तो न सिर्फ आप अपनी आय को बढ़ाएंगे, मछली बीज गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता आप बिहार में सुनिश्चित करेंगे, और अल्टीमेटली निश्चित रूप से आगे आप इसकी मछली उत्पादन आपके राज्य से बाहर जाएगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मछली जीरा उत्पादन की बात हो रही है, तो इस तकनीक को अपनाने के समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
0: मैंने जो कहा कि मछली का एज, मछली की उम्र क्या है, उस पर हमको ध्यान में रखना है। दूसरा कि हम इंजेक्शन सही तरीके से दे रहे हैं कि नहीं। तीसरा, जब हम मछली बीज जीरा का संचय कर रहे हैं, होता क्या है कि हमारे बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि जीरा का खरीदारी नहीं करते हैं, सबको फ्राई और फिंगरलिंग चाहिए। तो मछली बीज उत्पादन के लिए हमारे जो किसान हैं उसको चाहिए कि कम से कम 15-20 नर्सरी तालाब भी रखें, जिससे कि आप जीरा को आप अपने तालाब में फ्राई और अंगुली का अवस्था में बदल कर फिर किसानों को उपलब्ध कराएं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
1: और जब तकनीक सीखने की बात आती है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कहां कहां से इस तकनीक को वो सीख सकते हैं।
0: देखिए, ये तकनीकें आप जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी हर जिले में उपलब्ध है, उनसे आप संपर्क कर समूह बनाकर पटना में एक बड़ी अच्छी मछली जीरा उत्पादन तकनीक सिखाई जाती है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय से आप सीख सकते हैं। सीफे जो सेंट्रल की जो मछली उत्पादन के संस्थान है वहाँ से आप सीख सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना मछली जीरा उत्पादन के बारे में, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आय का एक स्रोत है अगर आप इसे अपनाते हैं तो। और मुझे लगता है कि हमारे बिहार क्षेत्र में जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दरभंगा मधुबनी में इसे इस प्रणाली को अपनाया गया है, फिलहाल दरभंगा और मधुबनी की बात करें तो, लेकिन पूरे बिहार में भी इसे अपनाया गया है, और कहीं न कहीं जो किसान भाई हमारे कोशिश में लगे हुए हैं, फिलहाल ज़रूरी होती है तकनीक की बात की। अगर आपको और भी जानकारी लेना हो इस तकनीक के बारे में तो डॉक्टर साहब ने आपको नाम बताया, आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में पूरे विस्तार से आप जानकारी ले सकते हैं और अपने आय का जरिया इसे बना सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो, आओ।
6: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
3: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपने

0: जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
1: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं,
2: जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
7: Yo, what's up?
8: Baby, let's go.
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मॉनसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316 जी, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।

है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है साथियों आपके मनपसंद प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई में, और आप सुन रहे हैं आपका सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। दोस्तों, हमने अब तक अपने कार्यक्रम में बहुत सारी बीमारियों की बात की है, लेकिन ऐसी बीमारियां जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या जिन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, उन बीमारियों को कहा जाता है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। दोस्तों, अक्सर हम अपने कार्यक्रम में एनटीडी जैसी बीमारियों पर बात करते रहे हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर एक बहुत जरूरी बीमारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, कुष्ठ रोग। दोस्तों, कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से लोग आज भी डर जाते हैं, लेकिन जिसके इलाज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ है हमारी अपनी टीकन देवी, जो लंबे समय से गांवों में लोगों को स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूक करती रही है। टीकन देवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भैया, और हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन देवी, आप अक्सर कहती हैं कि किसी भी बीमारी को समझने के लिए पहले इंसान की कहानी समझनी जरूरी होती है। क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई ऐसी कहानी सुनाना चाहेंगी?
1: हाँ भैया, हमारे पास के गांव में रामलाल के एक आदमी रहते थे। वो रोज खेत में काम करते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे, और एक दिन उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर एक हल्का सा सफेद दाग बन गया है। उस जगह पर उन्हें कुछ ज्यादा महसूस हो नहीं रहा था, तो उन्होंने इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, और ये बात उन्होंने किसी को बताई भी नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे उनके उसी हाथ में कमजोरी आने लगी और छोटे छोटे जख्म भी बनने लगे। जख्म की वजह से उन्हें कोई दर्द हो नहीं रहा था, और जब गांव के लोगों ने ये देखा तो कुछ लोग उनसे दूरी बनाने लगे। कुछ लोगों ने तो उनसे बात करना कम कर दिया, और कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों से भी उनसे दूर रहने को कह दिया। आखिरकार जब रामलाल को तकलीफ ज्यादा हो गई, तब वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए। वहां डॉक्टर ने जांच की और बताया कि उन्हें कुष्ठ रोग है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उन्हें मुफ्त दवा दी गई और उन्हें समझाया गया कि दवा नियमित रूप से लेनी है। तो रामलाल ने पूरी दवा ली और कुछ महीनों में उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन भैया, जो दर्द समाज की बेरुखी से मिला, वो दवा से ठीक नहीं हो सका।
0: दोस्तों, अभी टीकन देवी ने जो कहानी सुनाई, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। इससे पता चलता है कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक समाज की गलत सोच होती है। टीकन देवी, अब आप हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझाइए कि कुष्ठ रोग असल में क्या है।
1: भैया, कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है जो एक खास तरह के जीवाणु से होती है, और ये बीमारी मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करती है। इसकी वजह से त्वचा पर हल्के रंग के या लाल रंग के धब्बे बन सकते हैं, और उस जगह की संवेदना कम हो सकती है। जैसे रामलाल को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, और इसका मतलब ये है कि उस जगह पर छूने, गर्मी या चोट का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है, और अगर समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो ये बीमारी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, और इससे हाथ पैर में कमजोरी या कुछ स्थिति में टेढ़ापन भी आ सकता है। लेकिन भैया, अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है, और इसका फिर कोई स्थायी नुकसान भी नहीं होता।
0: टीकन निधि, आपने ये तो बता दिया कि कुष्ठ रोग असल में क्या है, लेकिन अब आप ये हमें समझाइए कि लोग इस बीमारी से इतना क्यों डरते हैं?
1: भैया, लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बीमारी छूने से फैलती है, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि ये किसी पाप का नतीजा है। ये नतीजा पाप का नहीं, बल्कि ये बीमारी जीवाणु से फैलती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसका इलाज ही नहीं होता, जबकि सरकार मुफ्त में इलाज देती है भैया, और लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर बीमारी वाले लोगों को समाज में रखेंगे तो फिर समाज में भी ये बीमारी फैल जाएगी, इसलिए उन्हें समाज से अलग कर देते हैं, जबकि ऐसा करना ना सिर्फ गलत है बल्कि गैर कानूनी भी है।
0: आपने कहा गैर कानूनी है, तो क्या सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई काम कर रही है?
1: देखिए भैया, भारत सरकार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है, जिसे NLEP कहा जाता है, और ये कार्यक्रम पूरे देश में लागू है, और इसके

0: तहत हर सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुष्ठ रोग की जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि एक भी रुपया नहीं लगता है। भैया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी विकलांगता को भी रोकना है। समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है उसे भी खत्म करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।
1: जी, तो क्या इस कार्यक्रम से कोई फर्क पड़ा है समाज में अभी तक?
0: हाँ भैया, बहुत फर्क पड़ा है। पिछले कई सालों में ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम हुई है और खास तौर से बच्चों में बीमारी का प्रतिशत घटा है, जिससे ये पता लगता है कि संक्रमण कम हो रहा है। और भैया आपको बताएं तो गंभीर विकलांगता वाले मामलों में भी बहुत कमी आई है और अब लोग पहले से जल्दी इलाज कराने के लिए आते हैं, तो लोगों को इससे खतरा भी कम होता है।
1: अच्छा, मतलब लोग अब पहले से जल्दी इलाज के लिए आ रहे हैं। तो बताइए कि इलाज कैसा होता है और इसके इलाज में कितना समय लगता है?
0: हाँ, इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी से होता है, जिसमें 3 दवाएं दी जाती है और कुछ मामलों में 6 महीने तक इलाज चलता है, और वहीं कुछ मामलों में अगर मामला थोड़ा गंभीर है तो 12 महीनों तक भी इलाज कराना पड़ता है। और ये इलाज बिल्कुल भैया मुफ्त है, तो अगर इलाज थोड़ा लंबा भी चल रहा है तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इसका पूरा इलाज उपलब्ध होता है। और भैया सबसे जरूरी बात जो मरीज को पूरी तरह से अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि मरीज को दवा पूरी अवधि तक लेनी चाहिए। अगर इलाज आपका 6 महीने तक चल रहा है तो 6 महीने दवाई लीजिए, और अगर आपका इलाज 12 महीने चल रहा है भैया तो 12 महीने दवाई लेनी ही चाहिए। अगर दवाई बीच में छोड़ेंगे तो बीमारी और खराब हो जाती है।
1: ये बात तो आपने सही कही कि इलाज बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। टीकन देवी, इसमें गांव और समुदाय की क्या भूमिका रही है अब तक, और गांव और समुदाय क्या भूमिका निभा सकता है?
0: हाँ, क्यों नहीं, गांव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर गांव के लोग समय पर लक्षण पहचान ले और मरीज को डराए नहीं बल्कि उन्हें अस्पताल भेजे और इलाज के दौरान उनका साथ दे, ना कि उनका मनोबल गिराए, तो बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और कोई नुकसान भी नहीं होता। और भैया समुदाय की बात करें, गांव की बात करें, तो वहां आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस बीमारी के बारे में समझाती है। लेकिन अगर गांव के लोग ही उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो आशा कार्यकर्ता का भी काम बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए भैया जरूरी है कि गांव के समुदाय के लोग आशा दीदी का साथ दे। जब वो आपके घर आती है समझाने के लिए तो बातों को समझिए, सुनिए उनको, और जो वो कहती है उन्हें अपनाइए।
1: बात तो सही कही आपने कि अगर गांव के ही लोग सहयोग ना करें तो उनका काम मुश्किल तो हो ही जाएगा। तो बताइए कि महिलाओं और बच्चों के मामले में हमें क्या खास ध्यान रखना चाहिए?
0: भैया महिलाएं तो अक्सर शर्म और डर के कारण देर से इलाज के लिए आती हैं, और महिलाओं को समाज से पहले परिवार का भी डर लगता है भैया। इसलिए ये बात बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी महिला को ऐसी बीमारी हो गई है तो परिवार भी उनका साथ दे, और बच्चों में जब बीमारी दिखे तो तुरंत इलाज कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों में तो बीमारी का मतलब है कि संक्रमण आसपास भी मौजूद है। इसलिए अगर बच्चों में बीमारी हो तो इलाज में जरा भी देरी अच्छी बात नहीं है।
1: और अगर किसी को नुकसान हो चुका है तो क्या मदद मिलती है?
0: हाँ, अगर किसी को नुकसान हो चुका है तब सरकार ऐसे लोगों को विशेष जूते देती है, दवाई देती है, साथ ही उन्हें फिजियोथेरेपी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिजियोथेरेपी करवाती है, और अगर ज़रूरत होती है तो ऑपरेशन की भी सुविधा सरकार ही देती है भैया। और अगर ऑपरेशन कराने वालों को आर्थिक सहायता चाहिए, उन्हें पैसे की परेशानी है, तो वो भी दी जाती है ताकि वो इलाज के दौरान ज़्यादा परेशान ना हो, वो सिर्फ अपने स्वस्थ होने पर ध्यान केंद्रित करें।
1: केस के बारे में कानून कुछ कहता है?
0: हाँ भैया, कानून कहता है, और कानून कहता है कि किसी के साथ बीमारी के कारण भेदभाव तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और भैया बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि अगर वो बता देंगे अपनी बीमारी के बारे में तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कानून कहता है कि किसी को नौकरी से निकालना, स्कूल से हटाना या समाज से अलग करना सब गलत है और दंडनीय है। कानून उन्हें इस बात के लिए दंड भी दे सकता है।
1: साथियों, टीकन दीदी ने हमें कुष्ठ रोग के बारे में बहुत सारी बातें समझाई, और अब तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कुष्ठ रोग कोई अभिशाप नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत गलत सोच से है। हम सब मिलकर सही जानकारी फैलाएं और हर इंसान को सम्मान दे, यही हमारी सोच होनी चाहिए। टीकन देवी, आपने हमें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई थी, क्या आप ऐसी कोई घटना साझा करना चाहेंगी जिसे लोग समझ सकें कि लाभ

0: उर्वाही और भेदभाव कितने खतरनाक हो सकते हैं।
1: हाँ भैया, ये कहानी सुनाना मेरे लिए बहुत भारी है लेकिन जरूरी है। हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। कुछ साल पहले एक दूर के गांव में शांति नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत गरीब परिवार से थी और रोज दूसरे के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। भैया, एक दिन उसने देखा कि उसके पैर के तलवे में एक छोटा सा जख्म बन गया है, लेकिन जैसे कि बताया कि उसमें दर्द होता नहीं है तो शांति को दर्द का एहसास हुआ नहीं। उसने सोचा कि अच्छा चलो, ये कोई मामूली बात है और इसे उसने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि दर्द तो हो नहीं रहा था। तो धीरे धीरे जख्म उसका बड़ा होता गया, लेकिन क्योंकि शांति को दर्द नहीं हो रहा था तो वो लगातार काम करती रही। गंदगी, धूल और पानी में वो जख्म इतना खराब हो गया भैया कि क्या कहें। और जब गांव की औरतों ने उसके पैर को देखा तो उन्होंने डरना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने तो उसे भयानक बीमारी है, इससे दूरी बनानी चाहिए, ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी। और भैया, शांति घर घर जाकर काम करती थी तो कुछ घरों ने उसे काम पर आने से मना कर दिया, यानी कि उसको काम से भैया निकाल दिया। उसकी आमदनी बंद हो गई, डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं बचे और डर भी था कि लोग क्या कहेंगे। और बहुत सारे लोग तो कह भी रहे थे कि भयानक बीमारी है, उससे दूरी बना लेनी चाहिए, और दूरी बना ली थी लोगों ने। तो धीरे धीरे उसके पैर में इन्फेक्शन फैल गया, जख्म बहुत सड़ने लगा, उससे बदबू आने लगी। तब तो गाँव वालों ने उससे पूरी तरह से दूरी बना ली। सिर्फ इससे शांति को ही नुकसान नहीं हुआ भैया, उसके बच्चों का भी स्कूल में आना मुहाल हो गया था। अक्सर बच्चे स्कूल से घर आकर रोते थे कि बच्चों को स्कूल में ताना सुनने के लिए मिलता है। और जब हालत बहुत खराब हो गई भैया तो उसे जिला अस्पताल लेके जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे कुष्ठ रोग है और बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर भी इलाज शुरू किया गया, लेकिन तब तक उसकी नसें इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका पैर बचाया नहीं जा सका, उसका पैर काटना पड़ा। और भैया, शांति ने बीमारी से ज्यादा ना समाज की बेरुखी झेली। अगर शुरुआत में ही उसको सही जानकारी मिल जाती, उसके साथ समय पर कोई उसको अस्पताल लेके चला गया होता और लोग उसको समाज से अलग नहीं करते, उससे डरते नहीं, उसके बच्चों को ताना नहीं देते, तो शायद शांति अस्पताल खुद चली जाती और उसका पैर बच सकता था। और ये कहानी हमको यही सिखाती है कि कुष्ठ रोग खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे, हमारी गलत सोच को हम पर हावी होने देंगे और हम किसी के साथ ऐसे भेदभाव करेंगे तो भैया किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है हमारे सोच से, हमारे गलत रवैये से। और अगर वहीं हम सबका साथ देंगे तो कोई पीछे नहीं छूटेगा। अगर किसी को बीमारी हो भी जाएगी तो हम उसे समझाएंगे, उसे अस्पताल लेकर जाएंगे और उसकी बीमारी को ठीक किया जा सकेगा।
0: कहानी तो आपने ऐसी सुनाई टीकन दीदी कि दिल भारी हो गया है, लेकिन सरकार और समाज क्या कर रहे हैं ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके?
1: ये बहुत जरूरी सवाल पूछा है आपने भैया। भारत सरकार ने साफ लक्ष्य रखा है कि 2027 के अंत तक देश में कुष्ठ रोग के फैलाव को पूरी तरह से रोक दिया जाए, यानी कि शून्य संक्रमण, शून्य विकलांगता और शून्य भेदभाव। और भैया, इसके लिए सरकार ने एक प्रोग्राम भी चलाया है जिसका नाम है नेशनल लिप्रेसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। प्रोग्राम के तहत जो भी खोज अभियान है, अगर कोई बीमारी सक्रिय रूप से है तो उन मरीजों को खोजा जा रहा है, संपर्क जांच, मुफ्त इलाज। और भैया, इसके साथ ही समुदाय को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, तो समुदाय को भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत जागरूक किया जा रहा है ताकि जो अगर कोई बीमार हो भी तो उनको समाज का साथ मिले। और भैया, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले तक ये कोशिश पहुंचाने का लक्ष्य है। लेकिन भैया, ये काम सिर्फ सरकार अकेले तो नहीं कर सकती है, इसमें हम सब की भूमिका है। इसलिए जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो ध्यान रखें और वो ये समझ लें कि अगर किसी को कुष्ठ रोग हो गया है तो उसको समाज से नहीं अलग करना है, उसको अस्पताल लेके जाना है, उसका आत्मबल बढ़ाना है, उसको ये समझाना है कि अगर इलाज ठीक से कराया जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और समाज मिलकर ना किसी की ज़िंदगी बचा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। समाज की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है भैया। बाकी सरकार तो कर रही है, अपने हिसाब से बहुत काम कर रही है, नेशनल लेपर्सी इरिडिकेशन प्रोग्राम भी चला रही है, इसके तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सरकार का काम तब तक नहीं पूरा होगा जब तक हम सबका साथ नहीं देंगे। और इसमें हम सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
0: वो कैसे टीकन देवी?
1: देखिए, क्योंकि बीमारी समाज में फैलती है और समाज में ही रुकती भी है, और अगर एक व्यक्ति को जानकारी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है, इसका मतलब ये है

0: कि हम सब मिलकर उस तक जानकारी पहुंचा नहीं पाए। मान लीजिए कि किसी को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने में दिक्कत है, जैसे बुजुर्ग है, विकलांग है, गरीब है, अकेले है, या फिर उन्हें डर है स्वास्थ्य केंद्र जाने का, तो चाहिए ना भैया कि पड़ोसियों को, परिवार वालों को, या स्वयं सहायता समूह को, या युवा मंडली जो होती है, युवा मंडलों को, पंचायतों की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाए, उनका साथ दे, उन्हें समझाए कि डरने की बात नहीं है। और भैया अगर किसी में लक्षण दिख रहे हैं और वो शर्म की वजह से या फिर डर की वजह से बता नहीं पा रहा है, तो हमको उसको डांटना नहीं है, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना है, उसको समझाना है, उसको बताना है कि भैया इलाज मुफ्त है, सुरक्षित है, और समय पे इलाज से पूरी तरह बीमारी ठीक की जा सकती है।
1: तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि पूरे समाज का ये काम है।
0: हाँ बिल्कुल, आशा बहन, आंगनबाड़ी दीदी, स्कूल के शिक्षक, ग्राम प्रधान, धार्मिक नेता, युवा महिलाएं, सरकार, युवा महिलाएं, हम सब मिलकर भैया माहौल बनाते हैं कि बीमारी छिपाई नहीं जाती, इलाज कराया जाता है और किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। भैया अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करें ना, तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई बच्चा विकलांग ना हो, कोई महिला डर के कारण इलाज से वंचित ना रह जाए, और कोई परिवार भेदभाव के कारण टूट ना जाए। क्योंकि भैया असली विकास तो तभी होता है जब कमजोर व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करे, है ना?
1: तो हम सब मिलकर सरकार के 2027 के लक्ष्य को सच बना सकते हैं।
0: हाँ भैया, अगर हम आज मिलकर जागरूकता फैलाएं, सही जानकारी साझा करें और एक दूसरे का सहारा बने, तो 2027 सिर्फ एक सरकारी तारीख नहीं रहेगी, वो हमारे समाज की जीत होगी भैया।
1: इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।
1: धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाल।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember,

0: vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में खास विषय आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से। और वैसे सब्जियों की बात करें तो भाई सब्जियों का नाम ना लें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में जो खाना बनता है, हमारे किचन में जो महिलाएँ खाना बनाती हैं, बिना सब्जी के अधूरा ही रहता है हमारा सारा खाना। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई जब इन्हें आते हैं तो उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे। तो आज कुछ ऐसी ही बातें करेंगे हम। कई बार होता है कि जो विषाणु जनित रोग हैं वो लग जाते हैं सब्जियों के पौधों में और उनको बहुत ही हानि होती है हमारे किसान भाइयों को इस वजह से। तो आज इसके निवारण की बात करेंगे, यानी कि आज जो हमारा विषय है वो है सब्जियों में लगने वाले विषाणु जनित रोग एवं उनका प्रबंधन। तो आज इस पर हम बात करने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अंसार और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से ये हमारे साथ आए हुए हैं। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, जैसे कि सब्जियों की बात करते हैं हम, तो सब्जियों में भी बहुत अलग अलग फसल होंगे जिसमें कि अलग अलग प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते होंगे, तो उन फसलों के बारे में थोड़ी जानकारी सबसे पहले दें और विषाणु जनित रोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि उनमें कौन कौन से विषाणु जनित रोग लग सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सब्जियों में बहुत विविधता है और वो मौसम के हिसाब से लगाते हैं। कुछ रबी फसल, रबी की सब्जियाँ होती हैं, कुछ खरीफ की सब्जियाँ होती हैं, कुछ हम लोग यहाँ गर्मी में लगाते हैं। तो इसमें सब्जियों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है और उनमें तरह तरह की बीमारियाँ भी आती हैं जो कि अगर हम समय उनका प्रबंधन नहीं करेंगे तो वो हमको काफ़ी नुकसान देंगी और किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां आती हैं
2: जी।
3: उनमें जब विषाणु जनित बीमारियों के अलावा भी बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फफूंद जनित बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं विषाणु जनित बीमारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या उभर के सब्जियों में आ रही है, जो देखते देखते किसानों की आय पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि इससे उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ने लगता है।
2: बिल्कुल।
3: तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सब्जियां जो हर मौसम में, जैसे आलू है, टमाटर है, मिर्च है, भिंडी है, बीन्स हम लोग अभी उगा रहे हैं, शिमला मिर्च प्रोटेक्टेड कंडीशन में उगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारी सब्जी की डाइवर्सिटी है
2: जी। तो सर, अभी आपने बताया कि टमाटर मिर्च, शिमला मिर्च जो कि हर मौसम में उपलब्ध होते हैं बाजार में और हम इसे अच्छे से इसकी जो सब्जी है वो बना के खा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टमाटर की तो इसमें कौन से विषाणु जनित रोग लग सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें?
3: जी, टमाटर में आजकल हम लोगों को जो देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या जो टमाटर में आ रही है, उसमें पत्ती का ऐंठना एक बीमारी, एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम लोग लीफ कल बोलते हैं। पत्ती ऊपर की तरफ उठ जाती है
2: जी।
3: जो कप शेप में, वो कप की तरह एक आकार बना लेती हैं और पत्ती थोड़ा सा मोटी हो जाती है, लेदरी लीफ हो जाती है और वो थोड़ा सा पूरा पौधा देखते देखते वो झाड़ी नुमा हो जाता है।
2: अच्छा।
3: तो उसमें क्या होता है कि फलन काफी प्रभावित होता है। अगर फल लग भी जाते हैं तो बहुत छोटे और वो काफी कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उनका मार्केट में कोई पसंद नहीं करता और लोग लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत नहीं आता है। तो जो हम लोग देखते हैं टमाटर में बड़ी समस्या जो आ रही है वो पत्ती का ऐंठना, यहाँ पे उसको कुकड़ी भी बोलते हैं, भंगरी भी बोलते हैं यहाँ के लोकल नाम से, लेकिन हम लोग उसको लीफ कर्ल बोलते हैं, जिसमें पत्ती ऊपर की तरह ऐंठ जाती है
2: जी।
3: तो ये एक टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है जो मुख्य तरीके यहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है बीमारी। और ये जो बीमारी फैलती है, एक कीड़ा होता है जिसको हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, उस सफ़ेद मक्खी से संक्रमित पौधे से वायरस को वो लेकर मक्खी और स्वस्थ पौधों में इसको पहुंचाती है। तो देखते देखते क्या होता है कि पत्ती उसमें अटना शुरू हो जाती है। तो ये समस्या जो लीफ कल की समस्या है वो टमाटर के अलावा मिर्च में भी आती है, शिमला मिर्च में भी आती है।

0: इसमें क्या होता है कि वही लक्षण आते हैं जो पत्तियां अट जाती है और पौधे छोटे रह जाते हैं, झाड़ी नुमा हो जाते हैं और उनका जो फलन फल जो उसमें निकलते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, जिससे किसानों को बहुत इससे नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको हम लोगों को इसका प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग जो कीड़ा जो इसमें लगता है, जो कीड़ा इसमें जो वायरस को फैलाता है एक पौधे से दूसरे पौधे में, उस कीड़े को हमको सबसे पहले नष्ट करना होगा। तो उस कीड़े को नष्ट करने के लिए हम लोगों को शुरुआती अवस्था से ही इसमें प्रबंधन पे ध्यान देना होगा। जब हम लोग पौधे नर्सरी लगाते हैं, टमाटर की, मिर्च की या शिमला मिर्च की, जब हम लोग नर्सरी उगाते हैं तो नर्सरी में हम लोगों को उस बीमारी को रोकना या उस कीड़ा जो कि उससे बीमारी फैलती है उस कीड़े को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो नर्सरी में रोकने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग नर्सरी ऐसे जगह पे लगाते हैं जहाँ पे जल जमाव ना हो। नर्सरी थोड़ा सा हम थोड़ा रेस्ड बेड में लगाते हैं और जो नर्सरी हमारी लगती है वो फाइन जो है नेट आती है, मच्छरदानी की तरह एक जाली होती है, बहुत बारीक जाली होती है, 40 मेश की जाली भी आती है, उससे हम लोग नर्सरी को ढक करके रखते हैं। जब पौधा उसमें 2-3 पत्तियां आ जाती हैं तो उससे पहले ही हम उसको नर्सरी को ढक देते हैं ताकि उसमें कोई इस तरह सफ़ेद मक्खी का कीड़ा प्रवेश ना हो सके, ताकि उसमें बाहर से कोई वायरस हमारे नर्सरी अवस्था में पौधों को ना प्रभावित कर सके। यदि नर्सरी अवस्था में ही अगर पौधा प्रभावित हो गया तो वो जब हमारा मुख्य खेत में जब रोपाई के लिए जाएगा तो वहाँ पे लक्षण आना शुरू हो जाएगा, चूँकि पौधा पहले से ही संक्रमित हो चुका है नर्सरी अवस्था में। तो इसलिए हमको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम लोगों को सफ़ेद मक्खी को रोकना है, नर्सरी अवस्था में ही उसको को रोक देना है ताकि हमारा संक्रमण वहाँ पे ना होने पाए। तो एक तो हम ये नर्सरी अवस्था में ही इसको रोक सकते हैं। दूसरी बात, जब हम नर्सरी से पौधे को निकाल के मुख्य खेत में लगाएं तो उससे पहले नर्सरी में ही दवा का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। तो दवाओं का जो छिड़काव हम लोग करते हैं इसके अंदर सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए इमिडाक्लोपिरेट आती है दवा 17.8 SL की, थायोमिथग्जाम आता है 25 WG का। ये दवा जो हम 1 ग्राम 3 से 4 लीटर पानी में हम लोग इसका घोल बना करके छिड़काव करते हैं। दूसरी बात है, जब हम लोग यहाँ से खेत में रोपाई के लिए जब नर्सरी से लेकर पौधों को जाते हैं तो जब वहाँ पे हम लोग रोपाई कर दें, रोपाई के 10 से 12 दिन या 15 दिन के बाद उसमें फिर से दवाओं का छिड़काव करना चाहिए हम लोगों को। तो उसमें इमिडाक्लोपिरेट या थायोमिथग्जाम दवा जो है इस दवा को हमको कुछ अंतराल पे डालना चाहिए, जैसे 8 से 10 दिन के अंतराल पे हम लोगों को या 12 से 15 दिन के अंतराल पे दवाओं का छिड़काव, इन्हीं दोनों दवाओं का बदल बदल कर छिड़काव करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, सफ़ेद मक्खी का काफ़ी हद तक प्रकोप कम हो जाता है, जिससे लक्षण कम आते हैं, उस तरह कोई दिखता नहीं खेत के अंदर। दूसरा जो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि प्रबंधन के ही क्रम में जब हम लोग बात करेंगे तो दवाओं के छिड़काव के साथ साथ हम लोग एकीकृत जो बीमारी का प्रबंधन जो करते हैं वो ज़्यादा लाभदायी होता है। तो हम लोग दवाओं के छिड़काव के साथ साथ इसके अंदर हम लोगों को जो बुवाई जो हम लोग करते हैं तो बुवाई करने के लिए हम लोगों को समय को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस समय पे हम पौधे की रोपाई कर रहे हैं, किस समय में हम नर्सरी डालते हैं, इन सब बातों का भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, जब हम लोग नर्सरी में से पौधे को निकाल कर मुख्य खेत में रोपाई कर देते हैं पौधे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पौधों के चारों तरफ हम लोग दो लाइन बॉर्डर क्रॉप लगाते हैं, बॉर्डर फसल लगा देते हैं जिसके अंदर मक्का या ज्वार हो सकता है, हम लोग दो लाइन उसके अंदर उगा देते हैं। उससे क्या होता है, सफ़ेद मक्खी डायरेक्ट खेत के अंदर नहीं जा पाता है, बाहर से ही वो बॉर्डर होने की वजह से वहाँ से वापस चला जाता है। तो जो इस तरह से जो बॉर्डर फसल हम लोग लगा देते हैं किनारे 2 लाइन 3 लाइन, उससे भी जो है सफ़ेद मक्खी खेत के अंदर नहीं जा पाती है, जिससे वायरस नहीं फैल पाता है उसके अंदर। तो हमारी फसल क्या होती है, देखने में स्वस्थ होती है और उपज भी अच्छा देती है।
1: जी, तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया था कि जो पत्ती ऐंठन की जो रोग है वो मिर्च और शिमला मिर्च में भी दिखाई देते हैं, तो क्या इसके अलावा भी कोई रोग हैं जो इनमें इन सब्जियों की फसल में दिखाई देते हैं, तो क्या
0: जी, जी,
1: उन्हें
0: जी,
1: भी बताएं?
0: बिल्कुल, इस बीमारी के अलावा एक बीमारी और भी आती है यहाँ पे, जिसको हम लोग देखते हैं कि तने के ऊपरी भाग में सड़न पैदा होता है और पत्तियों पर छल्लेदार गोल जो है रिंग दिखाई देता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक टॉस्पो वायरस आता है, जिसको हम लोग टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस बोलते हैं। टॉस्पो वायरस की एक समस्या यहाँ पर है जो मिर्च में और टमाटर में दोनों भी दिखता है। इसके अलावा और भी फसलें हैं जिसको अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे। तो टमाटर में और मिर्च में इसकी समस्या हम लोग को ज़्यादा दिखती है। तो इसको किसान भाई बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, अगर पत्तियों को देखेंगे तो पत्तियों पर एकदम बारीक लाइन वाले गोल धब्बे बनते हैं, जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये इसके अंदर

0: गोल छल्ले दिखाई दे रहे हैं, तो उन छल्लों से किसान भाई पहचान कर सकते हैं कि ये टॉस्पो वायरस का लक्षण है। और दूसरा जो लक्षण इसके अंदर आता है, जो गोल घेरे या सर्किल होते हैं, उसके अलावा जो होते हैं तने में सड़न होती है, जो उसमें जो हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ऊपरी जो बड्स होती हैं उसमें सड़न शुरू हो जाती है, जो ऊपर से ही सूखना शुरू हो जाता है
1: जी।
0: तो ये जो विषाणु होता है जो इसमें जो इस तरह के लक्षण पौधों में आते हैं टमाटर और मिर्च में, उसके लिए कीड़ा जिम्मेदार है जिसको हम लोग थ्रिप्स बोलते हैं। थ्रिप्स एक कीड़ा है, बहुत छोटा कीड़ा होता है, तो उसको जब हम लोग देखते हैं तो वो सफ़ेद कागज पर यदि हम नीचे लगाकर पौधे को थोड़ा सा हिलाएं तो उसके अंदर वो कीड़े सफ़ेद कागज पे दिख जाएंगे हमको, ये छोटे बहुत बारीक कीड़े होते हैं, फुदकते हैं उस कागज पे, तो उसको हम लोग उससे भी पहचान कर सकते हैं। तो वो कीड़े इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो ये ट्रांसपो वायरस आता है। तो इसको अगर हम इसके कीड़े के प्रबंधन की बात करें तो रोकने की बात करें तो हम लोग इसके अंदर वही दोनों दवाओं का छिड़काव, इमिडाक्लोप्रिड एंड थायोमिथोक्साम जो दवा है, इस दवा का जब हम छिड़काव करते हैं तो ये दोनों के दवाओं से छिड़काव से वो कीड़े मर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वायरस जो फैलता है वो जो है काफी हद तक कम हो जाता है और पौधे स्वस्थ दिखाई देते हैं।
1: तो ये तो बातें हो गई टमाटर मिर्च और शिमला मिर्च में जो जो रोग विषाणु जनित रोग लगते हैं उनके बारे में, उनके प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब, आलू और भिंडी जो है वो हर मौसम में पाया जाता है, और आलू तो यूँ कहें कि सभी लोगों के घर में हर रोज़ ये आता होगा, लेकिन ज़रूरी है कि आलू के भी रोग के बारे में किसान भाइयों को जाना बहुत ज़रूरी है, विषाणु जनित रोग कौन कौन से लगते हैं इसमें और साथ ही भिंडी में, तो इन दोनों के बारे में बताएँ।
0: जी, आलू एक बहुत मुख्य फसल है, हम लोग को सब्जी के रूप में उसको सालों साल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आलू हमारे यहाँ बिहार में काफ़ी एरिया में भी उगाया जाता है
1: जी।
0: हम लोग देखते हैं जो फफूंद और जनित बीमारियों के अतिरिक्त जो इसके अंदर बीमारी आती है उसका मुख्य बीमारी है जो विषाणु जनित बीमारियाँ हैं। जब हम आलू में विषाणु जनित बीमारियों की बात करते हैं तो 40 से अधिक वायरसेस हैं, विषाणु हैं जो आलू को प्रभावित करते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन जो यहाँ पे मुख्य जो आलू के जो प्रमुख वायरस जो हम लोग को जो दिखते हैं यहाँ पे, उसमें जो हमारा है एक मोज़ेक है, सबसे बड़ी समस्या मोज़ेक होता है जिसके अंदर पीले मोज़ेक की तरह से चित्तीदार धब्बे पड़ते हैं।
1: अच्छा।
0: कभी कभी क्या होते हैं वो पीले ना होकर के पत्तियों पर गहरे हरे रंग और हल्के हरे रंग में भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह का लक्षण पत्तियों में दिखता है मोज़ेक, जिसको हम लोग पीला हरा या बोल सकते हैं धब्बा, या गहरा हरा रंग या हल्का हरा रंग, इस तरह के लक्षण दिखते हैं पत्तियों में। इस तरह से प्रभावित पौधों में जो आलू बनते हैं वो छोटे होते हैं, और वो छोटे होने के साथ साथ जो है पौधे और भी पौधों में वो फैलते हैं जिससे कि उत्पादन पर इसका असर पड़ता है। तो इसमें जो मुख्य जो विषाणु है इसके अंदर एक आता पोटैटो वायरस एक्स, हम लोग जिसको बोलते हैं पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस वाई, पोटैटो वायरस एक्स एंड वाई का मिश्रित इन्फेक्शन संक्रमण देखा गया है। दोनों विषाणु एक साथ मिलकर भी पौधे को प्रभावित करते हैं। और जो चौथा जो है वो लीफ रोल है, जिसमें पत्ती रोल हो जाती है एकदम।
1: अच्छा।
0: तो ये तीन तरीके के जो है जो विषाणु जो दिखते हैं हम लोगों को मुख्य तरीके से, मोज़ेक हो गया, जो मोज़ेक में तीन तरह के विषाणु इसके अंदर लगते हैं, इसके अंदर पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस वाई एंड पोटैटो लीफ रोल वायरस, और पोटैटो वायरस एक्स और वाई का मिक्स इन्फेक्शन भी देखा गया है जिससे उसमें पत्तियों में गंभीर समस्या होती है। दो विषाणुओं के मिलने से जो लक्षण उत्पन्न होता है वो काफ़ी गंभीर होता है। तो यदि ऐसे लक्षण खेत में दिखाई देते हैं तो ये हम लोग मान के चलना चाहिए कि हमारा आलू इससे प्रभावित हो रहा है, और वो बीज के लिए भी किसान भाई कुछ बिक्री करते हैं उसमें, तो उससे जो पौधे निकलेंगे वो विषाणु ग्रसित वाले ही पौधे निकलेंगे। तो उस तरीके से अगर दृश्य से तो हम देखें तो उसमें हमारा बीज के रूप में वो काफ़ी नुकसानदेह होते हैं जो किसान भाई इसको कहीं दूसरे खेत में लगाते हैं बीज के रूप में। इसको जो हम लोग देखते हैं लक्षण की बात किए तो एक तो होता है कि अगर पोटैटो वायरस एक्स लगा होगा तो बहुत हल्के मोज़ेक उसमें दिखते हैं, पोटैटो वायरस वाई का दिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मोज़ेक होता है, लेकिन अगर इन दोनों का मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है साथ साथ में जब करते हैं तो बहुत गंभीर समस्या होती है। उसमें पौधे में जो है उसका सड़ना भी शुरू हो जाता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ऊपर से तने सूखने शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के लक्षण दिखते हैं
1: जी।
0: तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो किसान भाई जो देखते हैं जो पोटेटो वायरस एक्स जो आता है यहाँ पे मोज़ेक आता है वो ज़्यादा

0: ज़्यादातर जो संक्रमित बीज हम लोग लाते हैं, संक्रमित बीज को लगाते हैं, उसकी वजह से आने की संभावना ज़्यादा होती है। देखते हैं किसान भाई, कुछ आलू को काट करके भी लगाते हैं, जिसमें में 2-3 बड्स होते हैं, उसको हम लोग कट करके, बड़े जिनका साइज होते हैं उनको काट करके लगाते हैं। तो जो हम लोग इसमें चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वायरस के पार्टिकल जो होते हैं उसमें चाकू में भी लगते हैं, और उससे जब हम स्वस्थ आलू को काटते हैं तो उसमें वायरस फैल जाता है। तो वो क्या होता है कि जब हमारा पौधा लगता है तो उसमें देखते ही देखते जो उसमें विषाणु ग्रसित पौधे निकलते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, जब भी किसान भाई इस तरीके से आलू को काट करके लगाएं तो हम लोगों को ये पहले से ये सुनिश्चित करें कि वो जो हमारा जो बीज का जो सोर्स है, वो जो स्रोत है कहाँ से आ रहा है, इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग ऐसे जगह से बीज का ले जहाँ पे उसका कोई रजिस्ट्रेशन हो, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई एजेंसी के माध्यम से उसमें कोई उसकी मॉनिटरिंग की गई हो कि इसके अंदर बीमारी नहीं है, सीड सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये इसके अंदर कोई वायरस नहीं है। तो हम लोग ऐसे जगह पे बीज का चुनाव लें, ऐसे कहीं दुकान से खरीद करके, किसान भाई को ये सलाह दी जाती है दुकान से खरीद करके ना लगाएं, क्योंकि उससे जो दुकान पे मिलता है उनमें कोई गारंटी नहीं होती कि इसमें अंदर वायरस है कि नहीं है। तो इस चीज़ का अगर हम बीज का चुनाव सही से करेंगे तो हम लोगों का काफ़ी हद तक विषाणु नहीं आएगा खेत में। जैसा कि और वायरसेस की बात जब हम लोग करें तो लीफ रोल की जो बात करते हैं, तो लीफ रोल में क्या होता है कि पत्ती पाइप टाइप की हो जाती है। पाइप हम लोग जो देखते हैं, जो घरों में पाइप हमारे लगे होते हैं, नल में लगे होते हैं पानी के लिए, तो पत्ती वो रोल टाइप की हो जाती है, पाइप के तरीके से हो जाती है। और जब पत्ती को हम लोग दबाते हैं तो वो कट से आवाज़ करके टूटती भी है। तो ये इस तरीके से लीफ रोल वाली समस्या जो दिखती है आलू के अंदर, तो लीफ रोल होने से कि पत्ती रोल हो जाती है, पाइप की तरीके से हो जाती है, पौधा देखते ही पता चल जाता है इसके अंदर रोल वायरस लग गया है। तो इसके लिए हम लोग किसान भाई को यही सलाह देंगे कि वो जहाँ से बीज खरीदें वो कोई जानकारी वाला सोर्स हो, सरकार की निगरानी में रजिस्ट्रेशन वाले सोर्स हो, ऐसे हम लोग बीज कभी नहीं खरीदें। और दूसरी बात, जो ये वायरस फैलते हैं जो है, इसके अंदर एक एफिड होता है कीड़ा, जिसको हम लोग यहाँ पे लाही भी बोलते हैं, माहू भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो वो कीड़े को का प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस कीड़ों को रोकने के लिए जब ये जो हमने दवा बताई इमिडाक्लोपिड और थायोमेथोक्साम, दवा का स्प्रे करें ताकि उन कीड़े के संक्रमण को हम लोग खेत में कम कर सकें। तो वो जो कम हो जाएगा तो उससे बीमारी कम से कम फैलेगी और पौधा हमारा स्वस्थ होगा।
1: जी, तो अब बारी आती है सर भिंडी के बारे में, बताएं इसमें कौन कौन से।
0: जी, भिंडी अभी हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी की सब्जी में और बरसात की में जब देखते हैं तो भिंडी की का नाम पहले आता है। भिंडी हम लोग देखते हैं कि जो गर्मी में उगाई जाती है उनमें बीमारी कम आती है, और जो बरसात में उगाई जाती है भिंडी उनमें बीमारी ज़्यादा दिखाई देती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो जो इसके अंदर जो प्रमुख जो विषाणु जनित बीमारी है वो मोज़ेक है, जो है गोल्डन मोज़ेक हम लोग उस तरह टाइप का बोलते हैं, जो पत्ती पूरी उजली हो जाती है, पीले तरीके का एकदम दिखाई देने लगता है खेत में। मैं आप पौधे को बिल्कुल बता सकते हो कि इसमें मैं ये बीमारी लगी हुई। तो किसान भाई खेत में देखते होंगे कि पूरा पौधा पीला हो जाता है एकदम, जिनकी शिराएं पूरी तरीके से पीली हो जाती हैं और वो एकदम स्वस्थ पौधे से एकदम अलग दिखाई देता है। तो इसके लिए जो वायरस जो जिम्मेदार है उसके हम लोग बोलते हैं ओकरा येलोवेन मोज़ेक वायरस, और जो एक दूसरा वायरस आता है ओकरा इनिशियल लीफ कल वायरस। तो दो वायरसेस ऐसे हैं जो भिंडी को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इनके संक्रमण जो इनका फैलाव होता है, जो फैलते हैं जिससे, उसके लिए भी सफ़ेद मक्खी जिम्मेदार है। तो हम लोग सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए सबसे पहले ध्यान दें कि सफ़ेद मक्खी को कैसे रोकें। तो सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवाएं बताई गई हैं इमिडाक्लोपिड और थायोमेथोक्साम, और किसान भाई नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल मार्केट में मिलता है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, नीम का तेल लेकर के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जो अभी कुछ किसान भाई देखते हैं कि दवाओं का छिड़काव कम करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग इसको जो है नीम के तेल का भी छिड़काव करते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो उससे सफ़ेद मक्खी का जो खेत जो भिंडी में लगती है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और भिंडी के जब भी हम भिंडी लगाएं तो भिंडी के खेत के मेड़ों पर चारों तरफ 2 लाइन मक्के की या ज्वार की लगाएं एज ए बॉर्डर क्रॉप के रूप में, तो उससे क्या होगा कि सफ़ेद मक्खी डायरेक्ट खेत में नहीं घुस पाएगा। तो इस तरीके से हम उसमें जो मोज़ेक की समस्या है उसको हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
1: जी सर, जो सालों भर जो और एक सब्जी फसल है वो है बीन्स, और दूसरा है कद्दू वर्गीय फसल, तो इनमें कौन कौन से विषाणु जनित रोग लग सकते हैं, उनके प्रबंधन के बारे में भी बताएं सर।
0: जी बिल्कुल, बीन जो है हम लोग देखते हैं

0: अभी हम लोगों का जो ठंडी वाला मौसम में जो सब्जियां आती हैं उनमें बीन काफ़ी ज़्यादा मिलता है हम लोगों को।
1: अच्छा।
0: बीन में भी वायरस की बहुत बड़ी समस्या है, उसमें गोल्डन मोज़ेक एक आता है, उसमें पत्ती पूरी तरीके से पीली उजली हो जाती है। तो जो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा उर्द किसान भाई लगाते हैं, मूंग लगाते हैं, अरहर लगाते हैं, उनमें जो वायरस आता है गोल्डन मोज़ेक

0: दिखने लगता है, तो वो उसके लिए भी सफेद मक्खी ही उस वायरस को फैलाती है स्वस्थ प्रभावित पौधों से स्वस्थ पौधों में। तो इसके लिए उसको हम सफेद मक्खी को ही सबसे पहले कंट्रोल करेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया है। दूसरा, जब कद्दू वर्गीय फसलों की बात करते हैं, तो कद्दू वर्गीय फसलों में काफ़ी विविधता होती है, जिसमें हमारा लौकी भी आता है, तरोई भी आता है, नेनुआ है, झिंगली बोलते हैं, आपका तरबूज आता है, खरबूज आता है, तो ये सारे कद्दू वर्गीय फसलों में आते हैं हमारे। अच्छा। करेला है, तो इसमें जो है अभी हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा जो विषाणु जनित बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अभी आनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो बीमारियां इसके अंदर आती हैं, इसकी जो वजह है, जो हम लोग अभी समझ रहे हैं इसको, जो गर्मी में जो टमाटर की फसल जब हमारी ख़त्म होने वाली होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर टमाटर के बीच में ही या टमाटर ख़त्म होने के तुरंत बाद हम लोग उसमें कद्दू लगाना शुरू कर देते हैं, कद्दू वर्गीय फसल। तो उसमें जब पत्तियां, दो तीन पत्तियां जब निकल आती हैं, तो उसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होना शुरू हो जाता है, और वो सफ़ेद मक्खी जो पहले टमाटर में लगती थी, अब वो कद्दू वर्गीय फसलों में वो शिफ्ट कर जाती हैं, इसमें आ जाती हैं, क्योंकि उनको नया जो है कोई रसीला पौधा चाहिए होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, सकुलेंट हो, उसको ज़्यादा वो फीड करती हैं उस पर। तो वो टमाटर से उड़ के वो मक्खियाँ हमारी कद्दू वर्गीय फसलों में बैठती हैं, जिसके कारण जो वायरस टमाटर के अंदर आ रहा था, मिर्च में आ रहा था, वही वायरस अब कद्दू वर्गीय फसलों में आने लगा, तो जिससे उसके अंदर गोल्डन मोज़ेक लीफ का ऐंठना, पत्ती का ऐंठना, पत्ती का छोटा होना, पत्ती पौधे का पूरा झाड़ी नुमा हो जाना, इस तरीके की समस्या दिखनी शुरू हो जाती है। और अगर एक बार किसी पौधे में इस तरह का लक्षण आना शुरू हो गया, तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, उसमें लक्षण पूरा आना ही आना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले रोकथाम की बात करेंगे कि हमारा उसके अंदर वायरस आए ही ना, विषाणु उसके अंदर जाए ही ना पौधे के अंदर। तो इसके लिए जैसा कि अभी हम लोग बताएं, जो दवाओं का छिड़काव भी बताया, उन दवाओं का छिड़काव, और दूसरा जो है इनके किनारों पर बॉर्डर हैं, जो मेड़ों पर हैं, इनके मेड़ों पर मक्के की दो लाइन ज़रूर लगाएं। तो इससे क्या होगा कि सफ़ेद मक्खी डायरेक्ट खेत के अंदर नहीं घुसेगी और उसमें वायरस नहीं फैल पाएगा। तो उससे होता क्या होता है कि कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं हमारी, वो जो है बीमारी मुक्त होंगी। तो यदि इन सब बातों का अगर हम लोग ध्यान दें, तो काफ़ी हद तक विषाणु जनित बीमारियों को हम लोग सब्जी में रोक सकते हैं और किसान अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप कैसे प्रबंधन कर सकते हैं इन विषाणु जनित रोग का अपने सब्जियों के फसल में, तो आप अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी, और अगर स्वस्थ फसल होंगे तो इसके जो आर्थिक मुनाफा भी है आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, और जो सालों भर जो सब्जी के फसल हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं खाने में या जिस भी तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें कौन कौन से विषाणु जनित रोग यहाँ पर लगते हैं उन्हें बताया गया आप सभी को, और आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई और बहन हैं उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इन चीज़ों को जानकर। बहुत ज़रूरी है इनका प्रबंधन करना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक खास विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this.

0: vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है

जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराए और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का

प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: north and reach the first row. The panda is where the first row and the first column meet. Here we have a map of the zoo on a grid paper and we find various animals at various positions. There is also position mark for zoo and the grid is from 0 to 12 in a horizontal direction and 0 to 12 in the vertical direction. First move horizontally from 0 and then vertically. We write the meeting point of the first row and the first column as 1,1 within brackets. To reach the tortoise, move dash steps towards east and reach the dash column. Fill in the blank with the correct answers. Then move dash steps dash and reach the first dash. Here also we need to write down the correct answers. The location of the tortoise is 4,1 within brackets. What is at 1,4? Answer the following questions now. Question number 1. Locate the animal at the following positions on the map. A. 11,11 within brackets dash. B. 2,6 within brackets dash. C. 6,4 within brackets dash. D. 3,10 within brackets dash. E. 11,3 within brackets dash. F. 10,9 within brackets dash. Question number 2. Write the position of the following animals on the map. A. Lion dash. B. Elephant dash. C. Tortoise dash. D. Deer dash. E. Panda dash. F. Crocodile dash. You are expected to write down the correct positions in the blanks provided. Question number 3. Place dots of different colors on the following positions. A. 8,3 within brackets red in color. B. 2,9 within brackets green in color. C. 7,3 within brackets blue in color. D. 3,8 within brackets orange in color. E. 8,6 within brackets black in color. F. 6,6 within brackets pink in color. Chapter 14 ends here.
1: Maths Mela, you were just listening to this audiobook, textbook of mathematics for grade 5. Narration, Swarnalata Sharma. Sound recordist, Virendra Rawat. Production assistant, Soumya Malik. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: Namaste class. टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीवी किसी को भी हो सकता है टीचर जी
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं
3: जी सर आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी उपचार चल सकता है और भी लंबा
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं टीबी हारेगा देश जीतेगा
4: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं
5: तीनू मीनू राजू पिन्नी
4: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ
5: 11 दोस्त
4: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग

0: पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
1: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि।
5: हेलो नमस्कार, मैं हूँ आरजे अनु और आप सभी के बीच उपस्थित हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। वैसे दोस्त, उन्नत कृषि में खास तौर पर हम बात करते हैं फसलों की, फल फूल सब्जियों की, लेकिन जहाँ तक बात होती है मिट्टी की, तो कई बार हमारे किसान भाई जो हैं वो मिट्टी को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, और फिर भी उस पर खेती करने के लिए आ जाते हैं। तब उन्हें हानि ये लगती है कि जो उन्हें पोषक तत्व मिट्टी से मिलने चाहिए उनके फसलों को वो मिल नहीं पाती है, और इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है, वो है मिट्टी की जांच। जी हाँ किसान भाइयों, आज आपके लिए इसी विषय पर मैं बातें करने वाली हूँ, और हमारा जो विषय है वो है किसानों के लिए कितना ज़रूरी है मिट्टी जांच। तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वैसा ही होने वाला है, आज पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी आपको हमारे 90.8 FM ग्रीन पर मिट्टी के बारे में, कैसे आप मिट्टी की जांच कर सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, इसका उद्देश्य क्या है, और जो है इसके अलावे और भी बहुत से जो सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। फिलहाल तो मैं बता दूं कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
6: जी धन्यवाद।
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे किसान भाइयों के दिमाग में भी ये सवाल होगा कि ये मिट्टी जाँच है क्या, तो बताएँ हमारे किसान भाइयों को।
6: जी नमस्कार किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात है जो सबसे पहले मिट्टी जांच क्या है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए सभी को। जैसे कि मिट्टी जांच एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के नमूनों को रासायनिक जांच किया जाता है, और जांच के बाद उससे यह पता चलता है कि उसमें पौधों के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है, फिर उसी पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है उसके अनुसार हम लोग लो, मीडियम, हाई रेटिंग करते हैं, और रेटिंग करने के बाद जो है सो हम उस अनुसार किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है, और किन उर्वरकों की आवश्यकता होती है इसकी अनुशंसा करते हैं।
5: यानी कि मिट्टी जांच से कह सकते हैं कि फसलों के लिए जो पोषक तत्व मिलने चाहिए फसलों को मिट्टी से, वो उनमें उपस्थित हैं या नहीं, ये हम जांच करते हैं, और इसे ही मिट्टी जांच कहते हैं।
6: जी।
5: और डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहूँगी मैं, वैसे मैं जब ये इसके सवाल के जवाब ही आप दे रहे थे तो आपको पता चल ही गया होगा किसान भाइयों कि इसकी ज़रूरत क्यों है, लेकिन एक बार फिर से बताएं कि मिट्टी

0: की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे किसान भाइयों को?
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मिट्टी अनंत जीवों की आत्मा है। वह कैसे, जैसे कि हम लोगों को जब भोजन की आवश्यकता होती है तो भोजन मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, कपड़ों की आवश्यकता होती है तो उसके लिए रेशा भी हम मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, घर बनाते हैं तो लकड़ी छप्पड़ बनाने के लिए वहीं से उपलब्ध होता है। उसके बाद जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत सारे औषधि जो है वो पेड़ पौधे से मिलते हैं
0: और वो मिट्टी से आते हैं।
1: उसके अलावा जितने भी पेड़ पौधे में पोषक तत्व की उपलब्धता होती है उसको मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव ही गवर्न करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का डिपेंडेंसी जो है, निर्भरता जो है, वो मिट्टी पे ही है। इसलिए हम लोग इसको, हम कहते हैं मिट्टी जो है अनंत जीवों की आत्मा है
0: जी।
1: जैसा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉयल, सॉयल SOIL, सॉयल। एस फॉर सॉल, ओ फॉर ऑफ, I for infinite, L for life. Soil is a life, a of infinite life. Infinite life की a soul of infinite life. S for soul, I for infinite, L for life. Soil is a soul of infinite life. इसको बोलते हैं।
0: जी, तो ये तो हमने जाना कि आवश्यकता क्यों है और इसका उद्देश्य क्या है, ये भी जाना चाहेंगे।
1: इसका उद्देश्य है, जो हम लोग सघन खेती करते हैं, सघन खेती करने में बहुत सारा हाइल्डिंग वैरायटीज़ का उपयोग करते हैं
0: जी।
1: आज के दिन किसान बंधु, बहुत सारे किसान बंधु हैं लगभग, वो केवल एनपीके फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं।
0: अच्छा।
1: और जबकि पौधे को 17 आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उनके लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए, तो हम लोग देते हैं केवल 3 पोषक तत्व। और जो जागरूक किसान हैं वो 2 और जिंक या बोरन का एप्लीकेशन करते हैं, परंतु बाद बाकी जो हम बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कॉपर है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, इन सभी पोषक तत्वों को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर सघन कृषि के बाद खेतों में बहुत सारी विकार उत्पन्न हो जाती है
0: जी।
1: जिसके जानकारी के लिए हम लोग मिट्टी जांच करते हैं। दूसरा नंबर पहले ही बता चुके हैं, जो मिट्टी में पोषक तत्व के उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा चीज यह है, जो हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, ऊसर है या अम्लीय भूमि है, तो इसकी जानकारी के लिए हम मिट्टी जांच करते हैं ताकि उसका हम प्रॉपर सुधार का सुधार कर सके।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अब मिट्टी जांच की बात हो गई, इसका उद्देश्य क्या हो गया? तो मिट्टी जांच कहा जाता है कि उसका मिट्टी का जो है नमूना लिया जाता है, फिर उसे लैब में जाके टेस्ट किया जाता है। तो क्या मिट्टी के जाँच के लिए नमूने लेने का कोई उपयुक्त समय भी है?
1: जी हाँ किसान बंधु, इस पे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मिट्टी जांच के नमूना लेने का उपयुक्त समय क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा जो किसान बंधु, जब खेत खाली हो, जैसे फसल आपका कट जाता है, अमूमन ये अप्रैल के महीना में हम लोगों का गेहूं की फसल कटती है
0: जी।
1: अप्रैल के बाद अप्रैल के बाद मई जून आती है, ये 2 महीने और आधे अप्रैल का जो समय होता है ये खेत खाली होता है। इस समय आप मिट्टी का नमूना ले सकते हैं और ये सही उपयुक्त समय है। एक छोटा सा अंतराल और मिलता है हमको मिट्टी नमूना लेने का, बहुत कम समय मिलता है, वो समय है जैसे कि धान की फसल कटती है दिसंबर में, नवम्बर दिसंबर में, तो और उसके बाद गेहूं की फसल बुआती है, रबी की फसल बुआती है, तो इस बीच हमें 15 दिन या 1 सप्ताह का छोटा सा समय मिलता है मिट्टी नमूना लेने का, यह भी उपयुक्त समय है। एक छोटा सा समय जो हम रबी फसल बुआई से पहले और खरीफ फसल कटाई के बाद नमूना ले लें, और जांच कराने के बाद जो अनुशंसा होती है उसके बाद हम रबी फसल की बुआई

0: करना चाहिए। और इसका जो ज़्यादा समय मिलता है मिट्टी नमूना लेने का उपयुक्त समय, वो आधे अप्रैल से लेकर के 15 जून तक, मतलब जब तक कि बारिश आता है, बारिश का सीजन आएगा उससे पहले ही नमूना ले लिया जाना चाहिए।
1: यानी कि सुना आपने किसान भाइयों कि बारिश के सीज़न आने से पहले आपको नमूना लेना चाहिए, ये उपयुक्त समय है। और अब ये जानना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब कि इसकी जो मिट्टी की जांच है या फिर हम नमूना कैसे लें, किस तरीके कोई तरीका भी होगा उस नमूना लेने का?
0: हाँ किसान बंधु, मिट्टी का नमूना लेने का तरीका है और उस तरीके से ही मिट्टी का नमूना लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी जाँच की एक्यूरेसी नमूना लेने के तरीका पे निर्भर करता है। यदि आप नमूना ही गलत लेंगे तो आपका जांच मान जो है, जांच रिपोर्ट है, वो सही नहीं आएगा।
1: अच्छा,
0: तो हाँ इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नमूना कैसे लेना चाहिए। जैसे कि नमूना लेने से पूर्व मुझे कुछ हम सभी लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम जहाँ से नमूना ले रहे हैं वो वहाँ का जो मिट्टी भूमि है वो एक समतल है या ऊंच नीच है। यदि हमारा खेत समतल है तो एक एकड़ में एक नमूना, जो रिप्रेजेंटेटिव नमूना होता है, एक नमूना काफ़ी होता है। यदि हमारा भूमि जो है अंडुलेटेड है, ऊबड़ खाबड़ है, मान लीजिए कहीं से ऊंचा है भूमि, कहीं नीचा हो गया है, तो हम पहले भूमि को जो हमारे हैं वो उसमें कैटेगराइज करेंगे, बांट देंगे, जो ऊंचा वाला जगह हम अलग कर लेंगे और नीचा वाला जगह को अलग डिमार्केशन कर लेंगे। तो ऊंचे वाले जगह से अलग नमूना लेंगे और नीचे वाले जगह से अलग नमूना लेंगे।
1: अच्छा।
0: नमूना लेने के लिए जैसे समतल भूमि है या किसी खेत का नमूना लेना है, एक एकड़ का खेत है, तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव नमूना होना चाहिए। अब एक रिप्रेजेंटेटिव नमूना को कैसे लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग खेत में जाएंगे। खेत में जाने नमूना लेने के लिए हम दो चार सामान होता है वो ले लें साथ में, जैसे खुरपी है, थैला है, एकदम साफ नीट एंड क्लीन थैला होना चाहिए, उसके बाद मार्कर होना चाहिए, टैग होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के खेत में जाएंगे। खेत में जाने के बाद हम वहाँ खेत में रेंडमली 6-7 स्पॉट को चुनेंगे। जैसे खेत हमारा चौकूट है तो 6-7 स्पॉट को चुनेंगे जिगजैग मेथड में, और उस स्पॉट पे हम लोग सभी 6-7 स्पॉट से हम लोग नमूना लेंगे। नमूना लेने के लिए हम लोग भी आकार का गड्ढा बनाते हैं, भी अंग्रेजी का जो भी अक्षर है उसी के आकार का हम लोग गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा का जो गहराई होना चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, और भी आकार का जो गड्ढा बनाएंगे तो गड्ढा जैसे भी आकार का गड्ढा बनेगा तो उसमें दो किनारा बनेगा, बीच का जो मिट्टी होगा उसको हम लोग नहीं लेते हैं। जब भी मार्क बनाएंगे तो उसके बीच के मिट्टी को हम लोग हटा के बाहर फेंक देंगे। उसके बाद दो किनारा हमको मिलेगा, दोनों किनारे से खुरपी के सहारे जैसे ब्रेड का स्लाइस कटा हुआ रहता है वैसे ही दोनों किनारे से स्लाइस काटेंगे, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। ऐसा ना कि 15 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाए तो हमको नीचे से लेना है मिट्टी, ऐसा नहीं करना है। हमको मिट्टी का नमूना जो दो किनारा बन रहा है भी शेप का, तो ऊपर से लेके नीचे तक का स्लाइस काटेंगे और दोनों तरफ का स्लाइस हम लोग नमूना के रूप में लेंगे। तो इस तरह हमारे पास 6-7 स्पॉट होंगे, उन सभी स्पॉटों से हमको नमूना लेना है। नमूना जब हम लेके आएंगे तो उन नमूनों को, क्योंकि हमको एक एकड़ खेत से एक नमूना प्रयोगशाला ले जाना है तो हमारे पास 7 जगह की मिट्टी है, तो उन सभी मिट्टी को एक प्लास्टर वाला जो हमारे पास सरफेस होगा, सतह होगा, उस सतह पे मिट्टी को हम फैला देंगे। फैलाने के बाद उसमें से कंकड़ पत्थर खर पतवार जितने हैं सभी को निकाल देंगे।
1: अच्छा।
0: हाथ से उसको भुरभुरा बना देंगे। बनाने के बाद हम

0: उस मिट्टी को गोलाई के रूप में फैला देंगे और प्रयोगशाला में चूंकि आधी किलो मिट्टी ही पर्याप्त होती है और उतना ही मिट्टी ले जाना है, और आप चूंकि 6-7 जगह से नमूना लिए हैं तो आपके पास 2-3 किलो मिट्टी हो गया है, तो उसको हम कैसे कम करेंगे? तो उसको जैसे कि हम फैलाएंगे गोलाई के आकार का, तो फैलाने के बाद उसमें हम किसी लकड़ी से या उंगली से गुना का चिन्ह बनाएंगे, क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे। क्रॉस का चिन्ह बनाने के बाद वो 4 भाग में बट जाती है मिट्टी। 4 भाग में बटने के बाद हम करेंगे क्या, आमने सामने का जो मिट्टी है उसको ले लेंगे और फिर दूसरा आमने सामने का मिट्टी है उसको हम डिस्कार्ड माने हटा देंगे वहाँ से। फिर हमारे पास जितना नमूना लिए थे उसकी आधी मिट्टी बच गई। फिर हम दोबारा उसी तरह का गोलाकार में फैलाएंगे मिट्टी के नमूना को, फिर क्रॉस मार्क लगाएंगे और फिर 4 भागों में बट जाएगा मिट्टी। मिट्टी बटने के बाद पहले बार जो हम आमने सामने का भाग लिए थे उसको इस बार छोड़ देंगे, दूसरे वाला आमने सामने के भाग वाले मिट्टी को ले लेंगे और फिर जिस साइड से पहले लिए थे उस साइड को अलग हटा देंगे। इसके बाद फिर जो मिट्टी हमें बचेगा उस मिट्टी को हम ले लेंगे। ये मिट्टी अब आधे किलो मात्रा में आ गई होगी। यदि नहीं आया होगा तो फिर ये प्रोसेस जो है दोबारा करना है, दोबारा तिबारा करना है, जब तक करते रहना है जब तक कि हमारे पास आधे किलो मिट्टी का नमूना न बच जाए। अब आधे किलो मिट्टी का नमूना जो बचा है उसको हम लोग साफ थैला में उसको रख लेते हैं और रखने के बाद हम उसमें जितने भी जानकारी है, जैसे कि आपका जो किस खेत का पहचान क्या है, किस डेट में नमूना लिए हैं, और उसमें एक टैग जो लगाते हैं उस पे लिखना है खेत की पहचान, उससे पहले लिखिए किसान का नाम, उनका पता, उसके बाद दिनांक लिख दीजिए किस दिन को आप, किस दिनांक को आप सैंपलिंग किए हैं, नमूना लिए हैं, उसके बाद आप उसमें खेत की पहचान दीजिए, आपको कौन सी फसल लेनी है, इससे पहले आप कौन सी फसल उगाए हैं, उसके बाद खेत सिंचित है या असिंचित है, खाता खेसरा नंबर अगर हो सके तो दे सकते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। इन सभी जानकारी के साथ आप जो है नमूना को अपने पास के मिट्टी जांच प्रयोगशाला में, चाहे वह कृषि विज्ञान केंद्र का मिट्टी जांच प्रयोगशाला हो या बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मिट्टी जांच प्रयोगशाला में आप नमूना दे सकते हैं।
1: अच्छा सर, ये तो आपने पूरी की पूरी जानकारी दी कि कैसे ले सकते हैं और क्या क्या मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उस पर रहना चाहिए टैग पर, और इसके बाद यहाँ पर सावधानियों की बात कर लेते हैं, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए नमूना लेने वक्त?
0: किसान बंधु, सावधानी यहाँ पे जो नमूना लेते हैं ये बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट है नमूना लेने का मिट्टी जांच में, क्योंकि सावधानी पे ही सब चीज़ डिपेंडेंट करता है। अगर सावधानी नहीं करते हैं तो जांच रिपोर्ट गलत हो जाएगा और जांच से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सावधानी में आपको पहला नंबर ये ध्यान देना है, जो उपकरण आप प्रयोग में ला रहे हैं नमूना लेने के लिए वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। जैसे कि थैला अक्सर किसान बंधु करते हैं, जो बाजार से किसी पॉलीथीन में कोई सामान लाए उसी पॉलीथीन में आप नमूना लेके चले आते हैं, तो हो सकता है उस पॉलीथीन में जो पहले सामान लाए हैं, जैसे कोई कीटनाशक लाए हैं उसमें, या उर्वरक लाए हैं, या सर्फ है, साबुन है, कुछ भी है घरेलू उपयोग का चीज़ है, तो उसका कुछ पार्ट्स उसमें हो और आपके मिट्टी के नमूना को कंटामिनेट कर देता हो, तो यहाँ पे आपका जांच सही नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान देना है, जो आप सैंपल मिट्टी का नमूना जो जिस थैला में रखते हैं वो थैला जो है बिल्कुल स्वच्छ साफ होना चाहिए। अगर कपड़े का थैला यूज़ करते हैं तो उसको वो अच्छा थैला होना चाहिए, साफ थैला होना चाहिए, ऐसा ना जो सर्फ से धो दिए, साबुन से धो दिए और वो अच्छा से साफ ना हुआ हो, उसमें सर्फ का अंश हो, साबुन का अंश हो, तो जांच रिपोर्ट

0: गलत हो सकता है।
1: यानी कि आप जिस थैले को लेकर जा रहे हैं उसमें मिट्टी सैंपल को रखने के लिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
0: और भी है इसमें सावधानी, वो है जैसे कि आप मिट्टी नमूना लेते हैं खेत में, तो ये ध्यान देना है जो नमूना के लिए जो स्पॉट चुनते हैं 6-7 स्पॉट, वो स्पॉट का चुनाव जैसे कि

0: खेत में कहीं किसान बंधु कंपोस्ट डंप किए हुए रहते हैं, तो वो कंपोस्ट से दूर ही होना चाहिए। खेत में किसी किनारे में कहीं पे पेड़ लगा हुआ रहता है, तो उस पेड़ के एकदम पास से नहीं होना चाहिए सैंपलिंग।
1: अच्छा,
0: तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने से अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, और ज़रूरी है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ही होगा, तभी आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये जानकारी दी है, और जैसा कि हमारा विषय है किसानों के लिए कितना ज़रूरी है मिट्टी जांच, तो आपको आज बखूबी जो है आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी मिली हमारे किसान भाइयों को, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे किसान भाई इन बातों को अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, और अपने खेत की आप मिट्टी जांच ज़रूर करवाएं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: तो किसान भाइयों, आपसे आगे ऐसी ही मुलाकातें होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित, हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं अधिक फलन के लिए अमरूद के बागों में छतरा प्रबंधन कैसे करें और इसका महत्व क्या है। इस बारे में हमें विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं SMS हॉर्टिकल्चर KVK सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
7: थैंक यू उमा। नमस्कार किसान भाइयों।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि छत्र प्रबंधन है क्या?
7: अमरूद में मुख्यतः लोग अमरूद को अभी तक हमारे किसान जो अमरूद है बागवानी फसल में घर के पिछवाड़े तक ही रखे थे, लेकिन अभी व्यवसायीकरण का समय है, अमरूद की लोग सघन बागवानी लगाते हैं। जो दूरी अनुशंसित की गई है उस दूरी से कम दूरी पर जब अमरूद को लगाया जाता है तो उसको सघन बागवानी कहते हैं। तो जब सघन बागवानी लगाते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज है प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाना, फलन के उपयोग के लायक बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा कलों को क्रिएट करना। तो जब बाग आम अमरूद के पौधों को लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, शुरू के 2 साल तक उसमें प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, प्लांट की संरचना को बनाया जाता है, और जिसमें प्लांट को हम अपने पौधों को अपने अनुसार काटते छाटते हैं और इस प्रकार बनाते हैं कि उसका जो पेरीमीटर होता है, ऊपरी परिधि जो होती है,

0: वो 2 मीटर का हो जाए और जो उसका केंद्र वाला भाग हो वो खुला रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप उसमें जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो। तो जब अमरूद की सघन बागवानी लगाते हैं, कम दूरी पे लगाते हैं, और अगर उसकी कटाई छटाई ना की गई तो अमरूद का बगीचा नहीं जंगल हो जाएगा, और हमेशा उसमें सूट जो होते हैं कल्ले ही आते रहेंगे, फलन कम होगा। तो इसके लिए समय समय पर उसकी कटाई छटाई अति आवश्यक।
1: मैम, हमने क्षत्रप प्रबंधन के बारे में जान तो लिया, लेकिन हमें इस काम को कब करना चाहिए?
0: अमरूद में 3 फलन होता है, मृग बहार जो अभी हमारे यहाँ अमरूद के फलों में लगा हुआ है। मृग बहार इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फलन होता है, और बहुत ज़्यादा फलन होने से जब मृग एक ग्रुप में रहता है तो कभी अकेले नहीं रहता है, बहुत सारा मृग एक साथ रहते हैं। मृग बहार दूसरा जो फलन होता है वो अक्टूबर में होता है, जिसको अम्बे बहार कहा जाता है, और जब तीसरा फलन होता है इसका फरवरी मार्च में होता है, जिसे शरद बहार कहते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जो अमरूद रहता है उसमें अमरूद में एक फूल लगता रहता है, हमेशा अमरूद में एक फूल दो फूल आपके पौधों के अनुसार लगा रहेगा, उसमें छोटा छोटा फल लगा रहता है, उसमें धीरे धीरे धीरे फूल आने की प्रक्रिया चलते रहती है और उसमें फल आने की प्रक्रिया चलते रहती है। तो अमरूद में कटाई छटाई जो मुख्यतः किया जाता है वो मई के अंत में पहला होता है, दूसरा होता है अक्टूबर में होता है, अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ तक कर सकते हैं, तीसरा होता है जनवरी के अंत और फरवरी तक आप कर सकते हैं। आप कौन सा फलन लेना चाहते हैं उस पर मुख्यतः निर्भर करता है। अगर आप इसको फल तोड़ाई के बाद, हमारे यहाँ 3 फलन नहीं प्राप्त हो पाता है, चूँकि हम लोग बहुत ठंडे वाले प्रदेश में रहते हैं, जब इसमें नवंबर से लेकर के जनवरी तक काफ़ी ठंड पड़ती है तो उसमें पौधों का जो बढ़वार है वो धीमा हो जाता है और फलन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम लोग को बिहार में कंडीशन में ये 1 फलन नहीं तो 2 ही फलन हमारे किसान ले पाते हैं। इसके लिए कटाई छटाई फरवरी वाला कटाई छटाई मुख्यतः किया जाता है, और फरवरी के बाद आप अक्टूबर में काटते छाटते हैं। अगर इसको छत्रक बनाने के लिए हमारे किसानों को करना चाहिए तो मई में करना चाहिए, और फिर अक्टूबर में करना चाहिए, और अक्टूबर के बाद फिर जनवरी फरवरी में करना चाहिए।
1: और मैम कैसे करना चाहिए कटाई छटाई?
0: कटाई छटाई का एक खास प्रक्रिया है, जैसे आप अमरूद का पौधा लगाते हैं जून के महीने में, तो अक्टूबर में इसको पहला कटाई करना है। कटाई करने में पहले नीचे से 50 सेंटीमीटर एकदम तना को साफ सुथरा कर लेना है, कोई उस पर कल्ला नहीं रहेगा। दूसरा करना है कि ऊपर से 4 तना को चयनित कर लेना है जो चारों दिशा में हो, या 5 तना को चयनित कर लेना है, और 5 तना को फिर आधे भाग से काट देना है। और कटाई के उपरांत इसको सबसे पहले सारी पत्तियों को हटा देना चाहिए। पत्तियों को हटाने के बाद जो कटा भाग है उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाना चाहिए, कटे भाग को उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ, तना के नीचे की तरफ ला करके उसको लेप को लगा देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का फफूंद का आक्रमण ना हो। और पत्तों को बगीचा में ही रहने देना चाहिए, पत्तों को बगीचा के बाहर नहीं करना चाहिए, और कटाई के उपरांत एक पटवन निश्चित कर देना चाहिए।
1: तो इन तरीकों से कटाई छटाई करनी चाहिए।
0: मुख्यतः कटाई छटाई अमरूद में इतनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि अमरूद जो होता है नए कल्लों पर ही फलता है, नया कल्ला उसमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल उसमें लगे और फल बन सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो बातें बताई उम्मीद है कि उससे हमारे किसान भाई बहन या फिर जिनके भी घर में अमरूद के पेड़ हैं वो प्रबंधन करके अधिक फलन पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।

0: दूसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
1: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
1: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराए और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 cm की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है।

है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: page with tessellation and shapes. Page with different number tokens is also provided. We also have a page with nets of icosahedron and dodecahedron. We have a page with dots, and there is also a square grid page provided for using for performing the activities. Here ends chapter number 15.
1: Maths Mela, you were just listening to this audiobook, textbook of mathematics for grade 5. Narration, Swarnlata Sharma. Sound recordist, Virendra Rawat. Production assistant, Vineet Kumar Sharma. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: Tinku, tere kitne dost hai?
3: Tinu, Meenu, Raju, Pinni aur...
2: Aur tumhari wo 11 dost, jinka bachcho ki zindagi mein hona bahut zaruri hai. Aise dost jo kabhi na chode saath.
3: 11 dost?
2: Tinku, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: उन्नत कृषि किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु का या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
6: जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
5: संक्रमण होने
6: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं

0: में लंगड़ापन नजर आता है और खास करके कम उम्र के पशुओं में, 2 साल 3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
1: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
0: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये, इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
1: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
0: ये ज्यादातर पाया ही जाता
1: और
0: है।
1: सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
0: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-6 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है,
1: अच्छा,
0: और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
1: और गला
0: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
1: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
0: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
1: तो इसके लक्षण क्या?
0: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी, अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांग वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है, शरीर का तापक्रम, वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें, प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है, और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
1: टीकाकरण पर विशेष बल देना है, और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग भी होते हैं।
1: खुर और मुँह,
0: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
1: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
0: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है,
1: अच्छा।
0: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है, और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है।
1: नियंत्रण
0: किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है

0: वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशुपालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
1: उनको नुकसान होता है,
0: दूध में काफ़ी कमी आ जाती है और चलने में पैर के पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं। और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
1: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे वो पशुओं को इसलिए पालते क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए, और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती हैं ये?
0: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
1: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
0: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है, तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो और ऊँचे स्थान पर रखें, वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें, उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती हैं?
0: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग हैं और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
1: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
0: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
1: अच्छा।
0: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहां जल जमाव ना हो, और

0: इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
1: अच्छा।
0: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है HS, BQ और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
1: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज़्यादा अच्छा होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु हैं उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं, अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है, तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
0: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
1: जहां पर सभी पशु,
0: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं, तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
1: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
0: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
1: अच्छा।
0: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
1: कृमिनाशक
0: दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये, इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
1: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से, यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े, और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
0: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको, जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है

है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें

0: के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई ज़रूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि चिकित्सा से ज़रूरी है जो इससे बचाव। तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं, और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें, अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है, और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
1: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं, किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, की जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं, तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन, तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का, तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी, अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर से दूर अकेली रहती हैं, या फिर कई बार उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं लड़कियां घर पर रहती थी, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलकर काम भी करना पड़ता है, और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि उन्हें बाहर अकेले यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप
1: घर से दूर अकेली रह रही हैं, तो आपने अपने लिए कोई घर जरूर देखा होगा, कोई फ्लैट देखा होगा। तो सबसे पहली चीज का जो आप ध्यान रखें, एक ऐसे सुरक्षित जगह पर फ्लैट लें जहां सुरक्षित वातावरण हो। आप एक बार अपने आसपास जरूर देख लें कि वहां कैसे लोग रहते हैं। अब आपने अपना घर ले लिया है, आसपास के लोगों को भी देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी जिस घर में

रहने जा रही हैं। उस घर में आपसे पहले कौन रहता था? आप उन्हें ना जानती हो, लेकिन अभी आपके घर के लॉक को शायद वो जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने नए घर को तय कर लेती हैं, तो दूसरा काम ये करें कि आप अपने घर के लॉक को बदलें। इससे होता ये है कि आपके पहले जो भी किराएदार वहाँ रहते थे, उनका एक्सेस वहाँ खत्म हो जाता है। और हो सकता है कि इसके पहले जो लॉक लगा हुआ था, उसके बारे में किसी को जानकारी हो, या फिर उसकी एक चाबी किसी के पास हो। तो इसलिए आप जैसे ही नए घर में जाते हैं, उसका लॉक बदलना जरूरी हो जाता है। इसके आगे ये कोशिश करें कि अगर हो सके जिस एरिया में आप रहती हैं, वहाँ अगर कोई कैमरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगवा सकती हैं तो जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा नहीं लगवाया है या फिर ये अलाउड नहीं है, तो एक और काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पीप होल लगाएं या तो फिर वीडियो डोरबेल लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पीप होल क्या होता है। आपके घर के मेन दरवाजे पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है, जिसे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है। या तो फिर वीडियो डोरबेल लगवाएं। जैसे ही आपके घर पर कोई घंटी बजाएगा, आप अपने कमरे में बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है जब आप अकेली रह रही होती हैं, कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है। किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। और कई बार ये होता है कि आपके घर पर कोई परेशानी हो गई और किसी अजनबी को, किसी मैकेनिक को या ऐसे ही किसी और को बुलाना पड़ जाता है। तो इस वक्त आप ध्यान रखें कि आपने किसे बुलाया है, कब बुलाया है, इस बात की जानकारी अपने किसी परिचित को जरूर दें। आप एक काम और कर सकती हैं, कुछ ऐसे पालतू जानवर आप पाल सकती हैं जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। जैसे कि अगर आप कुत्ता पालती हैं, तो वो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर शोर करने लगता है। ये खास तौर से रात के लिए फायदेमंद होता है। रात को अगर कोई आपके घर के अंदर चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करता है, तो कुत्ता शोर करने लगता है और ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता पालने का एक और फायदा होता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा बनाए रखता है। आप अकेली रहती है, अकेले रहने वाले लोगों को डिप्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। अगर ऐसे में आपके पास कोई क्यूट सा पालतू जानवर होगा, तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा। ये तो बातें हो गई घर के अंदर की। आपके घर के आसपास कैसे लोग हैं, ये आपने घर लेने से पहले देख लिया था। अब आपको ये भी करना होता है कि आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इससे ये होगा कि वो भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आप जब घर पर रहती हैं, तब की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम घर की सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे घर से बहुत कीमती सामान की चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने तो अगर कैमरा लगवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्मार्ट होम डिवाइसेस खरीद सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स खरीद सकते हैं। ये शाम होते ही जल जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप घर पर ही हैं और चोर उचक्के आपके घर से दूर रहेंगे। घर से निकलने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया है, और एक स्पेयर की जो आप रखते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चाबी जो आप रखते हैं, उसे आपने अच्छे से छुपाया है या नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें, कहीं ये किसी और के हाथ में न लग जाए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहां से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहां होते हुए आप अपडेट करने से बचें। बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किन के साथ हैं। ये आपके सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपकी लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं, तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दे और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दे कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है। अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं, तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर
पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें, ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें। ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात को कैब से ट्रैवल कर रही हैं तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें और साथ

कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें, और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचे, और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही, आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराए और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316 जी, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3 और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था

प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तोड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഭാരത് കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम क्रीम, और मैं हूं आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारे हर रोज़ के इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम उन्नत कृषि है. इसमें हम बातें करते हैं उन्नत बातें खेती बाड़ी की, और आज एक ऐसा ही खास विषय जिसे जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो विषय है हमारा आज का, सुगंधित धान की वैज्ञानिक खेती. जी हाँ, सुगंधित धान का नाम सुनते ही कुछ ऐसे चावल आपके दिमाग में उसके नाम आ रहे होंगे जिसकी खुशबू आपको यूं ही अपनी ओर खींचती होगी कि चलो हम इसे पकाएं घर में और खाएं. तो कुछ ऐसे ही सुगंधित धान की बात करेंगे हम, और उसकी वैज्ञानिक खेती की बात करेंगे. तो चलिए आज मैं आपको बता दूँ कि इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद जी. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में. सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम.
0: सर, अगर हम सुगंधित धान की बात करें तो इसकी क्या खासियत है और इसकी

0: खेती कहाँ होती है?
1: मैडम, धान की विभिन्न किस्मों में सुगंधित धान का विशिष्ट स्थान है, जो उसमें विद्यमान खास गुणों के कारण है। यूँ तो सुगंधित धान की किस्मों में भी काफ़ी विविधताएं हैं, परंतु इसके चावल की क्वालिटी, खुशबू और महक लोगों के आकर्षण का मुख्य वजह बन जाता है। वैश्विक स्तर पर सुगंधित धान के उत्पादन एवं निर्यात में भारत का प्रमुख स्थान है, और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधिकांश सुगंधित धान का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप है। भारत में सुगंधित धान की खेती कहाँ होती है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में सुगंधित धान की खेती प्रायः हिमालय के तराई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में की जाती है, और खासकर ये सुगंधित धान जो है ये अपनी खुशबू के कारण काफी
0: प्रसिद्ध है,
1: प्रचलित है, और इसी खुशबू के वजह से ये लोगों की चाहत भी बनी हुई है, और हर लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी हम खेती करें।
0: बिल्कुल सर, आपने कहा कि इसकी खुशबू जो है वो आकर्षित करती है लोगों को, और इसकी खुशबू ही इसे अन्य धानों से अलग करती है, तो वो किस वजह से है इस सुगंधित धान में खुशबू?
1: हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चूँकि खुशबू से तो लोग वाकिफ हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसमें खुशबू क्यों होती है।
0: जी,
1: तो मैं आपको और किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में महक या खुशबू का होना ही उसका सबसे प्रमुख गुण है, और इस खुशबू के लिए बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स उत्तरदायी होते हैं, जिनमें 2-एसिटाइल 1-पाइरोलिन कंपाउंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, जो लगभग 12-13 की संख्या में हैं, लेकिन 2-एसिटाइल 1-पाइरोलिन, जिसको संक्षेप में 2-AP भी कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सुगंधित धान में इस 2-AP की मात्रा असुगंधित धान से लगभग 15 गुना ज़्यादा होती है।
0: अच्छा,
1: और सुगंधित धान में यह 2-AP 0.14 PPM होती है, जबकि असुगंधित धान में इसकी मात्रा 0.009 PPM होती है
0: जी।
1: और अच्छी मात्रा में ये 2-AP का निर्माण हो, इसके लिए धान की खेती, खासकर सुगंधित धान की खेती का जो उपयुक्त तापक्रम है और उसका रेंज है, वो 20°C से 30°C है।
0: तो सर, अगर किस्मों की बात करें हम, कि सुगंधित धान की हम अच्छी किस्म लगाना चाहते हैं, तो इन किस्मों के हम नाम जानना चाहेंगे, और साथ ही हम उसे कब लगाएं ये भी जानना चाहेंगे सर।
1: जी हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुगंधित धान की जो अनुशंसित किस्में हैं, प्रभेद हैं, उसमें सुगंधा, टाइप 3, भागलपुर कतरनी जैसी अच्छी प्रभेद है जो प्रकाश संवेदी है, और इनमें एक खासियत है कि इनका जो पुष्पन होता है वो खास तापक्रम आने पर ही होता है, और ये किस्में लंबाई में ज़्यादा होती है, मतलब इनकी लंबाई, ये लंबी लंबे पौधे वाली किस्में हैं। और दूसरे किस्म हैं जो प्रकाश असंवेदी हैं, और उन किस्मों में राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी, सबौर सुरभित आदि श्रेष्ठ हैं, जिनके पौधे बौना किस्म के होते हैं।
0: तो सर, अगर स्वस्थ बिचड़े की हम बात करें, तो इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए?
1: देखिए, सुगंधित धान को खासकर खुशबू के मकसद से ही लगाते हैं, तो उसका बिचड़ा तैयार करने के लिए भी किसान भाई को काफ़ी सावधानी की काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और किसान भाइयों को चाहिए कि सुगंधित धान की खुशबू का संबंध जो है, चूँकि वायुमंडलीय तापमान के साथ है, इसलिए उनको ये चाहिए कि अच्छी खुशबू या सुगंध के लिए पुष्पन का समय जो तापक्रम होता है वायुमंडल का, वह 20°C से 30°C के बीच हो। इसके लिए

0: सुगंधित धान के बिचरा हेतु बीज की नर्सरी में बुआई को सोच समझकर करनी चाहिए और सुगंधित धान के बीजों की बुआई नर्सरी में जून के अंतिम सप्ताह से 10 जुलाई तक करना ज़्यादा अच्छा होता है और खासकर भागलपुर कतरनी का जो बिचरा डालना है उसके लिए थोड़ा आगे का समय आपको लेना है। और भागलपुर कतरनी का बिचरा आप या हमारे किसान भाई 15 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर डालते हैं तो उसमें अच्छी खुशबू प्राप्त होती है।
1: तो कितने दिनों के बिचड़ों की हमें रोपाई करनी चाहिए और कितने दूरी पर?
0: मैडम, यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बिचरा को रोपने से पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बिचरे की तैयारी हम अच्छी से करें।
1: अच्छा।
0: और बिचरा स्वस्थ हो तभी हमको फसल अच्छा मिल सकता है। तो स्वस्थ बिचरा तैयार करने के लिए पहले हमको नर्सरी में बीज को बोना है और बीज को बोने से पहले उससे हम बीज से उपचारित करेंगे। और किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर एक एकड़ में आपको धान की रोपाई करनी है, सुगंधित धान की रोपाई करनी है, तो उसके लिए नर्सरी का जो एरिया होगा वो लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा। और इसमें बीज बोने से पहले आपको लगभग 2 क्विंटल सरी गोबर की खाद को 10 से 15 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना होगा। और अंतिम कदवा के समय आपको खेत में, यानी 400 वर्ग मीटर की नर्सरी वाले प्लॉट में 3 किलो यूरिया, 2 किलो DAP एवं 1.5 किलो MOP यानी पोटास को समान रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिट्टी या राख में मिलाकर नर्सरी प्लॉट में आपको डालना है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिचरा जब लगभग 15 दिनों का हो जाए तो उस समय फिर आपको उसमें एक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको नर्सरी वाले प्लॉट में लगभग 2 से 3 किलो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और बिचरा उखाड़ने से पहले, यानी जब बिचरा आप उखाड़ने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए ताकि उखाड़ते समय बिचरे के जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। तो ये सावधानी आपको स्वस्थ बिचरा तैयार करने के लिए बरतनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि बिचरे की रोपाई कब करेंगे और कितनी दूरी पर करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान का बिचरा जब 20 से 25 दिनों का हो जाए तब उसकी रोपाई करनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि बिचरा उखाड़ने से पूर्व नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए ताकि बिचरा आसानी से उखड़ जाए और जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। और बिचरा की रोपाई आप 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर लगाएं और एक स्थान पर 1 से 2 बिचरा को ही लगाएं, इससे ज़्यादा बिचरा नहीं लगाएं, अन्यथा फिर टिलरिंग में कमी आ जाएगी। और बिचरे को रोपने से पूर्व उसकी जड़ों को जैव उर्वरक जैसे एजोस्पिरिलम, PSB और KSB कल्चर के घोल में 15 से 20 मिनट तक आप डुबो कर रखें, यानी धान के बिचरे के जड़ों को इन जैव उर्वरक दवा के कल्चर के घोल से उपचारित कर के ही रोपाई करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
1: सुगंधित धान के लिए ज़रूरी है खाद और उर्वरक की मात्रा जानना, तो कितनी मात्रा दें और इन्हें हम कब डालें?
0: तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में जैसे आप राजेंद्र सुवासिनी या सवोर सुरभित जैसे प्रभेद को लगा रहे हैं, यानी सुगंधित बौनी किस्मों को लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो उर्वरक डालना है उसे अंतिम कदवा के समय 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 35 किलोग्राम DAP, 15 किलोग्राम पोटास को मिलाकर समान रूप से आपको खेत में बराबर रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो उसके लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट को राख या मिट्टी में मिलाकर अकेले DAP के साथ नहीं मिलाना है, इसको अकेले इस्तेमाल करना है, तो मिट्टी या राख में मिलाकर उसको कदवा के समय खेत में

0: समान रूप से छीट देना है। और जब फसल 25 दिनों का हो जाए, मतलब रोपनी के 25 दिनों बाद, आपको पुनः 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से पहला टॉप ड्रेसिंग करना है, और दूसरा टॉप ड्रेसिंग करना है जब गाभा निकलने की अवस्था आवे, तो उस समय फिर 20 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और यूरिया के टॉप ड्रेसिंग के समय कोशिश ये करना चाहिए कि खेत में पानी लगा हुआ नहीं रहे, और बेहतर हो कि खेत में अगर पानी ज़्यादा लगा है तो पानी को निकाल दें, टॉप ड्रेसिंग करें, और टॉप ड्रेसिंग करने के तीसरे दिन फिर खेत में पुनः पानी लगा दें। यहाँ मैं किसान भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो पूर्व में जो हमने बताया है उर्वरक की मात्रा, वो राजेंद्र सुभाषनी और सबौर सुरवित के लिए था, लेकिन अगर आप भागलपुर कतरनी लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए कदवा के समय आपको DAP देना है 25 किलोग्राम, यूरिया देना है 10 किलोग्राम और पोटास देना है 15 किलोग्राम। और जब इसकी टॉप ड्रेसिंग, प्रथम टॉप ड्रेसिंग करेंगे 25 दिनों के बाद तो उसमें मात्र 10 किलोग्राम यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करना है पहला, और दूसरा जो टॉप ड्रेसिंग फिर गाभा वाली अवस्था में करेंगे तो उसमें भी मात्र 10 किलोग्राम यूरिया का ही टॉप ड्रेसिंग करेंगे। अगर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो धान में लॉजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो धान के गिरने की संभावना प्रबल हो जाएगी, तो ये सावधानी आपको बरतनी है।
1: तो ये बातें हो गई सावधानियों की। और डॉक्टर साहब, अब ये जानेंगे हम, सिंचाई प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होती है, तो किस तरह हमें सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए सुगंधित धान की खेती में?
0: मैडम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जैसा कि हम जानते हैं कि धान को कहते हैं कि जल ज़्यादा प्रिय होता है, धान के लिए जल प्यारा होता है, और एक कहावत भी है कि धान के खेत में दरार नहीं पड़ना चाहिए। तो धान के खेतों की सिंचाई में ये किसानों को पहले से पता है और उन्हें सावधानी भी बरतनी है। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि रोपाई के बाद लगातार 2 सप्ताह तक खेत में पानी लगा कर रखें, ताकि खरपतवार का अंकुरण ना हो, और अगर आप खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल किए हैं तो उस दवा का भी प्रभाव सही ढंग से हो सके। उसके बाद यह ध्यान रखें कि 2 दिनों से ज़्यादा खेत पानी के बिना ना रहे, अर्थात किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार ना पड़ने पाए। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पुष्पन के समय, मतलब फ्लावरिंग के समय, खेत में पानी की बिल्कुल कमी ना हो, और धान कटाई के 2 सप्ताह पूर्व यानी 15 दिन पहले अगर खेत में ज़्यादा पानी है तो उस पानी को आप बाहर निकाल दें, और ऐसा करने से बाद की जो रबी फसल की बुआई आप करने जा रहे हैं उसकी बुआई भी समय से संभव हो पाएगी। बस सावधानी ये बरतनी है कि आपके खेतों में किसी भी परिस्थिति में दरार न पड़े। पानी, मतलब अगर 2 दिन तक अगर खेत खाली है तो आपको तीसरे दिन हर हाल में पानी खेत में डाल देना अनिवार्य है।
1: तो इस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर खरपतवार की समस्या हो जाती है तो उसका निदान कैसे करेंगे?
0: जी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और खरपतवार की समस्या से हर किसान रूबरू होते हैं। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रारंभ से ही तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले आपको सावधानी ये बरतनी है कि अगर खेत में आप गोबर की खाद या FYM डाल रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि गोबर की जो खाद आप डाल रहे हैं वह पूर्ण रूपेण सड़ा हुआ हो, ताकि उसमें खरपतवार के बीज जीवंत रूप में ना रहे, वो बिल्कुल गोबर के साथ ही वो भी सड़ जाएं। तो आपको पूर्ण रूपेण सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। दूसरा, कि आप जो बिचरा डाले हैं या बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बीज भी जो है खरपतवार से मुक्त हो, तो आपको ऐसे संस्थान से बीज लेना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और उसमें खरपतवार के बीज ना हो। तीसरी बात, कि कदवा के समय बहुत किसान भाई लापरवाही बरत जाते हैं, जैसे तैसे कदवा कर देते हैं।

0: तो उस वजह से भी बहुत सारे खरपतवार खेतों में जिंदा रह जाते हैं। तो कदवा करते समय किसान भाइयों को चाहिए कि हम कदवा ठीक से करें ताकि खेत में जो भी खरपतवार हैं वो अच्छी तरह से उनका जड़ उखड़ जाए और मिट्टी में पूरा लिपट के वो सड़ जाए। तो कदवा की तैयारी भी आपको ठीक से करनी है। और इसके अलावे अगर आपके खेतों में खरपतवार की समस्या आती है तो धान रोपाई के दूसरे या तीसरे दिन ब्यूटा क्लोर 50 EC या प्रेटिला क्लोर 50 EC का 1 से 1.25 लीटर दवा को आप 15 से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर एक एकड़ खेत में समान रूप से छींट दें। और कंडीशन ये है कि जिस समय आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों उस समय आपके खेत में कम से कम 1 से 1.5 इंच पानी लगा हुआ रहे ताकि पानी के लेयर के ऊपर ये दवा का लेयर आ जाए और जो भी नीचे से खरपतवार निकलने वाले हों उसको निकलने ना दे, वो खरपतवारनाशी दवा के संपर्क में आकर वहीं मर जाए
1: जी।
0: तो ये सावधानी बरतनी है। और अगर उसके बाद भी आपको या किसान भाई को खरपतवार की समस्या नजर आती है तो धान की रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद पुनः 20 पायरीवैक्स सोडियम 10% के नाम से दवा आती है और इस दवा का 80 से 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव अगर किसान भाई करते हैं तो उनको खरपतवार से निजात मिल जाएगी और फिर उनका फसल स्वस्थ हो जाएगा। और अच्छी टिलरिंग जब हो जाएगी, उसके पौधे जब घने हो जाएंगे तो फिर उसके फसल को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा
1: जी। तो ये तो बातें हो गई खरपतवार की जो समस्या उसका निदान कैसे करें। और डॉक्टर साहब अगर कीट और रोगों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख कीट और रोग हैं जो धान सुगंधित धान में लग सकते हैं और उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं।
0: देखा जाए सुगंधित धान जैसा नाम है सुगंध, तो सुगंध सबको प्यारा होता है
1: जी।
0: तो सुगंधित धान में कीट और रोग के प्रकोप भी काफ़ी होते हैं
1: जी।
0: और खासकर यह देखा जाता है कि सुगंधित धान में धर छेदक जो कीट हैं उसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया है और इसके लिए फसल की देखभाल किसान भाई को नियमित रूप से करनी चाहिए। और जैसे ही उनको ये नज़र आए कि 2% से ज़्यादा मृत मूल कल्ले अथवा सफ़ेद बालियां नजर आ रही है खेत में तो शीघ्र उन्हें उचित कीटनाशी दवा का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। इसके लिए किसान भाई आप क्लोरपाइरीफॉस्ट 20 EC की 1 लीटर मात्रा को अथवा फिप्रोनिल 80% WG की 15 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव करेंगे तो धर छेदक कीट से फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावे किसान भाई अपने खेतों में फेरोमन ट्रैप 5 फेरोमन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं या ट्रैको कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्ड पर्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कीड़े के प्रवेश को या कीड़े के भक्षण में या कीड़े को मारने में ये कारगर सिद्ध होगा। और दूसरा कीट है गंधी कीट। दूध बनने की अवस्था में गंधी कीट दानों से रस चूस लेते हैं जिस कारण दाने खखरी हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि मालाथियान 5% धूल या मिथाइल पाराथियान 2% धूल की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह के समय जिस समय पौधे पर ओस होते हैं उस समय इसका अगर भुड़काव करेंगे तो ये गंधी कीट जो हैं आपके खेतों से भाग जाएंगे और फिर आपके फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप कीट से अपने फसलों की बचाव कर सकते हैं। और रोग भी सुगंधित धान में लगते हैं जिसमें खास करके पत्र लांछन जिसे लीफ स्पॉट कहते हैं, झोंका जिसे ब्लास्ट भी कहते हैं और जीवाणु पत्र झुलसा जिसे BL भी कहते हैं और आवरण झुलसा जिसे शीत ब्लाइट कहते हैं, ये काफ़ी नुकसानदायक है सुगंधित धान के लिए। तो किसान भाइयों इन रोगों से बचाव हेतु सबसे

0: पहले तो बीजोपचार और बिचरा उपचार करें, अपने खेतों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और रोग के लक्षण दिखते ही उपचार हेतु संबंधित विभाग के वैज्ञानिकों से अथवा विश्वविद्यालय के किसान हेल्पलाइन से संपर्क करें। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके फसल में पत्र लांछन रोग लगा है तो इसे बचाव हेतु आप डाइथेन जेड 78 या मेनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 3 से 4 बार छिड़काव करें और शीथ ब्लाइट से बचाव के लिए वैलिडामाइसिन नाम की दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 3 बार खरीफ फसल में छिड़काव करें और बीएलबी से बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा की 20 ग्राम मात्रा के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 किलो को 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 2 बार छिड़काव करेंगे तो बीएलबी से भी आपके फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को कुछ और बताना चाहूँगा, चूँकि फसल की कटाई और तैयारी भी सुगंधित धान के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, तो सुगंधित धान की गुणवत्ता, खुशबू और उत्पादन पर कटनी के समय का काफ़ी असर पड़ता है और विलंब से कटाई करने से दाने झड़ जाते हैं, चावल की मात्रा में और उसकी खुशबू में भी कमी आती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि सुगंधित धान के फसल की कटाई 50% फूल आने के 30 से 35 दिनों बाद, जिस समय दाना में लगभग 20 से 24% नमी हो, उसी समय उसकी कटाई कर लें और खेत का पानी कटाई के 10 से 15 दिनों पूर्व बाहर निकाल दें। कटाई के दूसरे दिन ही कोशिश करें कि उसकी हम थ्रेसिंग कर लें और जो थ्रेसिंग करने के बाद आपको धान मिला है उसको सीधा धूप में ना सुखाकर उसको छाया में तब तक सुखाएं जब तक कि उसमें 12 से 14% नमी ना आ जाए। ऐसा करने से मिलिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव कर जाती है और भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। और जब इसका भंडारण आप करेंगे तो भंडारण करने से पूर्व आपको ये एश्योर कर लेना चाहिए कि सुगंधित धान का भंडारण हम उस समय करें जब धान में नमी का स्तर 12 से 14% तक आ जाए और भंडारण गृह की सही ढंग से सफाई और कीटनाशक दवा से अच्छी तरह से वो उपचारित हो, तभी आपको भंडारण करना चाहिए। और इस प्रकार से अगर सारे सही तरीके को अपनाकर किसान भाई अगर सुगंधित धान की खेती करते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त होगी और ये पैदावार लगभग 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की हो सकती है और जिसका बाजार भाव भी उनको अच्छा मिल सकता है।
1: तो जैसा कि किसान भाइयों और श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आप सही तरीके से सुगंधित धान की खेती करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार और बाज़ार में इसका अच्छा मूल्य भी मिल सकता है। तो ये वैज्ञानिक खेती और इसकी तैयारियाँ पूरी यहाँ पर बताई गई हैं, आपको किस तरीके से बिचड़े को तैयार करना है और इसके साथ ही खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसे कब लगाना चाहिए, कौन सी किस्में सही हैं और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में, कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। तो वैज्ञानिक खेती आपको यहाँ पर बताई गई पूरी की पूरी सुगंधित धान की। तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को सुनें और ज़रूर इसे अपनाएं और जब आप खेती कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए खेती करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने

0: भी खसरा होना निश्चित है।
1: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
2: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
2: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
0: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
2: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
2: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
2: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है, इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
6: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
8: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली 3-4 तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मेकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमा हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
6: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
8: पहली जो हमारी

0: डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई। तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पे हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुवाई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुवाई करना कैसे है, हम सीधी बुवाई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारे रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसके वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियाँ, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को, तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
1: पडलिंग यानी कि
0: हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे, वो अच्छे अच्छे फाइन, मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी, मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या क्या, हमने पहले नर्सरी तैयार किया, गया जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पर, तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना

होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पर कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने प्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक पडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पर, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से, वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25 से 25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं, अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था, तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं, तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है।

स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्रीविधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में

0: जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में, तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर किसानों के पास मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, वैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने 3 बताए आप उन 3 में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उनको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे 1 से 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डिपॉग नर्सरी। तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पर भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से

0: 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से, तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डपॉग नर्सरी। तो ये डपॉग नर्सरी हम श्रीविधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्रीविधि में यूजली डपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक

दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मॉनसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला KMR 316 जी, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3 और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी

एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जब हम फिल्मों की बात करते हैं, रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं और ऐसी रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं जिसका अंत बेहद दुखद रहा हो, तो उन फिल्मों में एक नाम सबसे ऊपर आता है। वो नाम है देवदास। देवदास का अंत हर किसी के दिल को छू गया था, हर किसी को रुला गया था और हर किसी को ये सोचने पर उस अंत ने मजबूर कर दिया था कि क्या कोई ऐसा प्रेमी हो सकता है। देवदास, इस फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा और शायद आपको ये भी पता होगा कि फिल्म की कहानी एक नॉवेल से इंस्पायर्ड थी और इस नॉवेल को लिखा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बहुत ही कमाल के लेखक और ऐसे लेखक जो आज भी लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, आज भी उनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अंग उमंग कार्यक्रम में हम शरद चंद्र के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाता अंग प्रदेश से रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि देवदास का नाता अंग प्रदेश से रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों का ये मानना है और जो कुछ प्रचलित कहानियां हैं कि देवदास यही भागलपुर के कुछ जीवित किरदारों के ऊपर लिखा गया था। देवदास, पारो, चुन्नी लाल सभी मौजूद थे, अलग अलग नामों के साथ और थोड़े अलग किरदारों के साथ, थोड़ी अलग कहानी के साथ। दोस्तों, अगर हम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1876 में हुआ था। ये एक बंगाली नॉवेलिस्ट थे, छोटी कहानियां लिखा करते थे और ये ज्यादातर बंगाली परिवारों के बारे में लिखा करते थे, सोसाइटी के बारे में लिखा करते थे और गांवों के बारे में लिखा करते थे। इनकी जब आप कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप जान पाते हैं कि ये चीजों को कितनी गहरी तरीके से ऑब्जर्व किया करते थे। जो इनके आसपास लोग होते थे उनके लिए इनके मन में सिंपैथी थी और बहुत ही गहरी समझ ह्यूमन साइकोलॉजी की, किस तरीके से लोग सोचते हैं, किस तरीके से औरतें सोचती है, बच्चे सोचते हैं, पुरुष सोचते हैं, उनके सोचने में क्या अंतर है, उनके रवैये में क्या अंतर होता है, ये चीजें उनके लिखने के स्टाइल को बहुत ही नेचुरल, प्राकृतिक बना देती थी। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो भी लिखा वो पॉलिटिकल बायसनेस से बिल्कुल दूर रहा और कोई भी सामाजिक भ्रांतियां भी उनके लेखनी में आपको नहीं मिलती है। उन्होंने हर तरह के रुकावटों को तोड़ा, ऐसी रचनाएं लिखी कि कभी कभी कुछ शालीन घरों के लोगों ने उसे पढ़ने से परहेज भी किया। हाँ, देवदास ये उपन्यास जब प्रकाशित हुई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस उपन्यास को पढ़ने से परहेज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे देवदास एक ऐसा नाम बन

वो पॉलिटिकल बायसनेस से बिल्कुल दूर रहा और कोई भी सामाजिक भ्रांतियां भी उनके लेखनी में आपको नहीं मिलती है। उन्होंने हर तरह के रुकावटों को तोड़ा, ऐसी रचनाएं लिखी कि कभी कभी कुछ शालीन घरों के लोगों ने उसे पढ़ने से परहेज भी किया। हाँ, देवदास ये उपन्यास जब प्रकाशित हुई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस उपन्यास को पढ़ने से परहेज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे देवदास एक ऐसा नाम बन

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।

से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो FM 3। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

रेडियो FM ग्रीन आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सपोर्ट से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं। इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो तरबूज।

तरबूज का 2 चम्मच, जी हाँ 2 तरबूज का रस नहीं आपको चाहिए होगा, 2 चम्मच तरबूज का रस, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है, और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है? तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं, और ख़ास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है, और साथ ही सोने पे सुहागा ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले, उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर
फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक

को इस्तेमाल कर रहा है, जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहे। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको तीन बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में चार चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट ज़रूर कर लें कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

विद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
2: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज़ करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
1: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
2: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं, और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं वतर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी

0: पेसिंग तो पहले देख लेते हैं. मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बॉय करते हैं. तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पर लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पर जो धान होता है उस पर सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं. और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर. तो इस तरह की सीधी बुवाई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसकी वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है. जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं. जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में. दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि. तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं. तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है. तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी. तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान, धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं, तो उस समय उसको हम निकालते हैं, और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जो हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को. तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है.
1: पडलिंग यानी कि
0: पडलिंग यानी कि हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे. हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया. इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे, वो अच्छे अच्छे फाइन मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेती हैं. तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं. तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब. तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया, तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला, और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया. और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो. अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी, जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पर. तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस पर कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में. वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20x10 या 20x25, ये हमारा 20x10 या 20x15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है. यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है, और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए. सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं, ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे. तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम

जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन, तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया हमने कहीं पर भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक मॉडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी, तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डिपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25 से 25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं, अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था, तो उसमें हमने एक जगह पे, जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं हैं उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं, तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो, जैसे आपने, हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में, उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की, और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का, मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं, उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें, तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री

0: विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी तीन तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपनी डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने तीन बताए आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पर डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली तीन तरीके की होती है, एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे एक से एक 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले एक दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डिपॉग नर्सरी, तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है, तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको

0: को खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डपॉग नर्सरी। तो ये डपॉग नर्सरी हम श्रीविधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्रीविधि में यूजली डपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: 19 कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका

अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है।
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
1: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है। साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो।
0: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
1: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है।
0: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
1: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है।
0: जी मैम, और बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीज उपचार करना चाहिए?
1: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य

0: रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं, इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 kg सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो वो बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर सुखा ले छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदीनाशी से उपचार करना चाहिए। फफूंदीनाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेविस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 kg बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए। और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए। और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
1: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
0: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी, नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है। वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 m² एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें यानी कि 2 to 3 ploughings करना चाहिए, और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम थर्ड प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 m चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई, निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएं आसानी से की जा सके। और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 cm चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहाँ पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहाँ पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए, और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 cm तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 cm तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
1: और मैम, अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: 1000 m² की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 kg केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 m² में बीज की बुआई के पूर्व

0: 5 kg नाइट्रोजन, 5 kg फॉस्फोरस और 5 kg पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है। और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 kg जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 kg चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: मैम अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
0: रोपनी के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्धजल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं उनमें सबौर श्री, राजेंद्र महसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
1: तो किसान भाई बहन मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम आपने जो जानकारी दी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद उमा।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि उन्नत कृषि
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
4: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें 3 कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग

0: बोलते लीची माइट, ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
1: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
0: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
1: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
0: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
1: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
0: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़क कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि इस सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
1: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
0: जी,
1: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छंटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छंटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई तो इसका मतलब लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुँचाने वाला कीट है उसको खा जाता है, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर

0: प्रकोप अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
1: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं दो तीन केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा, जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% ईसी आता है मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
0: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच है अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फ़ायदे हैं। मैम,
2: हाँ, थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है, तो आम फलों का राजा ये काफ़ी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफ़ी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 ग्राम जो है उसमें प्रति 100 ग्राम में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफ़ी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
0: अच्छा।
2: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसके जो गिरी होता है उसके अंदर, गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक के चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसके हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है, इसमें चूंकि विटामिन्स मिनरल्स पाया जाता है तो ऑटोमेटिक है, और ये एनर्जी रिच फूड है तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है। शरीर में स्फूर्ति आती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से दूर होता है। नींद आने की किन्हीं को समस्या हो, वो नींद नहीं आती है, तो इनका आप सेवन करेंगे तो आपको नींद भी आएगा। और जो गर्भवती स्त्रियां यदि इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे सुंदर और स्वस्थ बच्चे को वो जन्म देती है। इसका सेवन करने से कमजोरी दूर होता है। और यदि हम रात में सोने से पूर्व ताजा रस का सेवन करें तो कब्ज दूर होता है। और गुठली का जो गिरी होता है उसका, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको हम लोग आटे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको यदि महीन चूर्ण बना लें तो मंजन की भांति उसको हम दांत साफ करते हैं तो पायरिया आदि रोग से हम लोग को
0: छुटकारा
2: मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आम का बहुत फायदा है। यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है और उसको हमें सेवन अवश्य करना चाहिए।
0: जी मैम, अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण और मूल्य संवर्धन?

0: ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है, तो उसका उसमें कुछ उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2 महीना 3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहन ये वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10 दिन 15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी कई महीने रख सकते हैं। लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, खत्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी खराब होने लगता है। 2 3 दिन 3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ
1: अच्छा।
0: चीज़ तो ऐसे है कि 1 2 दिन में ही हमारा खराब होने लगता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन का, कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
1: जी
0: यदि जो चीज़ की मौसमी है, यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन
1: हाँ
0: यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं। वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है।
1: जी
0: दूसरा कि यदि हम कोई जो किसी चीज़ को उत्पादन में जो खर्च लगता है उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है। तो जैसे कि हम आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है।
1: खराब हो
0: यदि
1: जाता है।
0: उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए।
1: अच्छा
0: इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। तो इस तरह से हम काफ़ी फल सब्जी का काफ़ी महत्व है और इसको हमें अवश्य करना चाहिए।
1: जी अब मैम देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा
0: हाँ
1: सकते
0: बिल्कुल
1: हैं?
0: लनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं। और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: अच्छा
0: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है, जो तो जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं, और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4 5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए। इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इसे। मैम अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
0: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं। जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियाँ बनाती हैं, जिसपे हम लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही
1: जी
0: है। तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं, जनरली वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबा सल्फाइड के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज़्यादा अच्छा
1: ज्यादा
0: होता
1: बढ़
0: है। ऐसे
1: जाता है
0: आमतौर पर महिलाएं उसको सीधे धूप में
1: धूप
0: सुखा
1: में
0: करके
1: सुखा
0: बनाती
1: करके।
0: हैं। लेकिन यदि ये आप एक स्टेप कर लेती हैं तो आपका आमचूर का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पन्ना भी आजकल जब धूप होता है तो हर घर में पन्ना बनता है, यहाँ तक कि चौक चौराहे पर भी पन्ना मिलता है, और दिल्ली जैसे शहर में पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है। मतलब इसका काफ़ी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 लीटर पानी, 80 ग्राम नमक, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। तो उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश को हम लोग बोतल में भरते हैं उसी तरह बोतल में भर देते हैं और इसमें KMS पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं कि जैसे 5 लीटर है तो उसमें 3 ग्राम के अंदाज से उसमें के दर से उसमें

मिला करके उसको पैक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आमचूर बना सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है, उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉपर फल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उस फलों को आप अच्छे से धो कर कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें, टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीज का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आपका पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं। तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके बाद उबालने के बाद उसको, या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गुदा को अलग कर लेते हैं, रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं। उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गुदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गुदा हुआ है उस गुदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं। और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं, चीनी का आधा पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आंच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं, उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसके बाद प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम 4 ग्राम क्योंकि कच्चे आम का बना रहे हैं इसलिए 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा चाशनी और आम दोनों जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर के आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डाले तो वहाँ 5 से 6 ग्राम साइट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से, और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका कुछ हटा करके उसके गुदे को निकाल लेना है, गुदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है, इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं, ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में से गर्म करके गुदा को नरम कर लेते हैं। अब गुदे की मात्रा का 3/4 या बराबर, मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गुदा कर लेते हैं उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो, पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके देते हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2 से 3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में लपेट कर खोलते

0: पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबोएं, बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उससे थोड़ा छेद कर दीजिए, और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चाशनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से साइट्रिक अम्ल मिला दें। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चाशनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें। उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए, उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं, फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं, इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य एवं पोषणीय सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और श्रोताओं आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं आरजे अनु को। आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हां श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बातें। तो आज भी एक खास विषय और आज हम बात करेंगे, जी हां, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत लीची और आम के बागों का प्रबंधन कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रूबी रानी। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: मैडम। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत आम और लीची के बागों का प्रबंधन, तो इनके तोड़ने के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं इस फल की, और ताकि आने वाले समय में अच्छी फलन उन्हें प्राप्त हो सके।
2: किसान भाइयों, बागवानों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बगीचे की उत्पादकता एवं उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन किया जाए। वास्तव में होता क्या है कि किसान को जब फूल आने लगते हैं पौधों में, चाहे लीची में चाहे आम में, तब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब इसमें क्या करें ताकि मेरा फलन ज़्यादा हो। लेकिन ये आवश्यक है कि तुड़ाई के बाद ही उसका सही ढंग से प्रबंधन करें, चाहे कीट व्याधि का प्रबंधन हो, चाहे पोषण प्रबंधन हो, चाहे उसकी तुड़ाई हो, प्रूनिंग हो, और कुछ भी तरह की जो है समस्याएँ हैं उसका प्रबंधन अगर सालों भर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे बागवान को उत्पाद का अधिक मूल्य और मुनाफा प्राप्त होता है।
1: जी,
2: तो हम एक एक करके बताना चाहेंगे कि लीची और आम में तुड़ाई के उपरांत
1: क्या
2: करना चाहिए, बगीचे में क्या करना चाहिए ताकि अगले साल में आने वाले फलन जो हो वो ज़्यादा अच्छा हो और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता युक्त भी हो।
1: जी मैम, अब कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो क्या कुछ क्रियाकलाप करना चाहिए तुड़ाई के बाद बागों के प्रबंधन के लिए?
2: सबसे पहले आम और लीची के तुड़ाई के समय में तुरंत या उसके तुरंत बाद बगीचे में बहुत सारी सूखी एवं टूटी टहनियाँ, पत्ते, सड़े गले फल आदि रह जाते हैं, जो कि कीट एवं व्याधि के लिए वैकल्पिक आधार का स्रोत का काम करते हैं। जब वो पेड़ में नहीं रहते हैं तो टूटे पत्तों में, टहनियों में, और जो सड़े वाले फल होते हैं या तो पेड़ पे सड़ जाते हैं या फिर टूटने के बाद सड़ जाते हैं, तोड़ने के दौरान जो है बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं जिसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े का प्रकोप होता है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत बगीचे की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई में क्या करें, रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, सड़े फलों को बगीचे से बिल्कुल बाहर निकाल दें। साथ ही पेड़ में अगर कोई रोगग्रस्त टहनियाँ हों, पत्तियाँ हों, कीड़ों का आदि का प्रकोप हो तो उसका जो है, अगर वो टहनी काटने लायक हो तो उसको काट दें, अगर वो टहनी काटने लायक नहीं हो तो उन सभी रोगों और व्याधियों का समुचित प्रबंधन करें ताकि उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाए। अगर टहनियाँ अधिक झुकी हों, अर्थात जमीन पे भी कोई सटी हुई हो, क्योंकि उसमें जब फल लगते हैं तो फल के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें भी अगर फल होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि तुम्हारा फल इसमें लगा हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं। परंतु फल की तुड़ाई के बाद वैसी टहनियाँ जो जमीन को छूती हुई हों या अधिक झुकी हुई हों उनकी छटाई भी आवश्यक है, ताकि जो है 1 से 1.5 मीटर जमीन तक जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कोई टहनी रहे और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके।
1: जी मैम, अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की, तो आम और लीची के बागान में जो है पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
2: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे जून के महीने में लीची की तुड़ाई जो है जून तक खत्म हो जाती है, जून के महीने में जो है आप लीची का जो है तुड़ाई के उपरांत की सूखी टहनियाँ, आड़ा तिरछा और रोगग्रस्त टहनियाँ वृक्ष के छत्रक के बाहर

0: हर जाति टहनियों को छटाई कर दें ताकि उसमें समुचित हवा और सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहे। और छटाई के उपरांत जो है बेधक छटाई अगर समुचित ढंग से करेंगे तो जो स्टेम बोरर का कीड़ा है उसका प्रकोप कम हो जाता है और छत्रक के अंदर की तरफ भी फल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रक के अंदर में भी तब उचित हवा और सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना शुरू होता है। साथ ही साथ लीची की मकड़ी से आक्रांत टहनियाँ जो हैं उसको भी काटकर बगीचे से दूर मिट्टी में दबा दें। उसके बाद बागों की हल्की जुताई करें जिससे जून जुलाई के महीने में जो भी खरपतवार और मिट्टी के साथ सड़े गले की मिट्टी के साथ मिट्टी में पड़े कीड़े और मकोड़े उसके लार्वे नष्ट हो जाएं। और इसके बाद जब तुड़ाई हो जाता है तब उसके बाद जो है उसके पोषण प्रबंधन करते हैं, चाहे आम हो या लीची हो, तुड़ाई के उपरांत ही उसका हम पोषण प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले बगीचे की सफाई करते हैं, उसके थाले का निर्माण करते हैं और पोषण कहाँ पर दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए बताएंगे कि जो भी छत्रक का फैलाव हो उस छत्रक के फैलाव से आप एक सीधी जहाँ पर लकीर खींच दें ऊपर से नीचे तक और तने के से और उस दूरी को चार बराबर भागों में बांट दें, यानी कि जो भी छत्रक का फैलाव हो वहाँ से और पेड़ के तने की दूरी को चार बराबर भागों में बांटें, एक भाग अंदर की तरफ एक भाग बाहर की तरफ को छोड़ दें और बीच वाले जो दो भाग हैं उसी में मुख्यतः आप फर्टिलाइजर का उपनिवेश करें, वहीं पर फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि पौधे का अधिकतर जो है वो अवशोषी जड़ें जो होती हैं रूट हेयर्स जो रहते हैं जो कि पानी और पोषण का अवशोषण करते हैं उन्हीं क्षेत्रों में रहता है। इसलिए पहले थाले का सफाई करके पेड़ जो भी बगीचे में आपके सूखी टहनियाँ रोगग्रस्त टहनियाँ सड़े गले पत्ते हो उसको हटा दें, एक बार जुताई कर दें, फिर उसको थाले का निर्माण करके पोषण प्रबंधन करें। पोषण के रूप में अगर आपका वृक्ष जो है बगीचा जो है वो व्यावसायिक रूप से फल रहा है 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर का है तो उसके लिए आप जो है नाइट्रोजन 800 से 900 ग्राम, फास्फोरस 400 से 50 ग्राम और पोटास जो है 800 से 1000 ग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष दें। इसके साथ ही 40 से 50 किलो आप जो है कंपोस्ट भी उसमें डालें। ध्यान रहे कि ये मात्रा जो है प्रति वर्ष प्रति पेड़ के लिए है और इसकी मात्रा जो इस मात्रा की 3/4 भाग आप जुलाई माह में डालें और 1/4 भाग जो है फल के उपरांत, फल जब लग जाता है तब उसके बाद अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह में दें ताकि उसमें फल की बढ़वार ज़्यादा अच्छे से हो सके, फल का साइज बढ़ सके। लेकिन 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में ही, जून जुलाई के महीने, जून लीची के केस में जून के अंतिम से लेकर के जुलाई अगस्त महीने तक और आम के केस में जुलाई अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर तक आप पोषण का प्रबंधन कर लें।
1: जी कई बार मैम देखा जाता है कि आम और लीची के बागों में कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है तो इसका प्रबंधन कैसे कर सकें, कैसे करें?
0: कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए आपको तुड़ाई के उपरांत ही ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत ध्यान देना शुरू करें होगा। जैसा कि मैंने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ उसकी प्रूनिंग कर लें, उसकी छटाई कर लें और जहाँ पर भी आपको लगे कि कीड़े मकोड़े हैं उसका उचित प्रबंधन कर लें। अब है कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं
1: जी।
0: लीची के केस में बता दें कि लीची माइट का प्रकोप बहुत होता है। इसका ये लक्षण होता है कि पत्तियाँ में जो है वो ब्राउन कलर का, कॉफ़ी के कलर का एक वेलवेट नुमा संरचना बन जाती है पत्ती के पिछले भाग में और धीरे धीरे ये पत्ती सिकुड़ जाती है
1: जी।
0: और ये जो वेलवेट नुमा आकार का जो है बनता है वो संरचना जो बनती है पत्ती में इसको कहते हैं इरेनियम और उस इरेनियम के नीचे जो है वो उसके कीड़े रहते हैं, माइट के जो हैं वो कीड़े रहते हैं, लीची माइट के कीड़े रहते हैं। तो इसलिए जो अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आक्रांत पत्ते हैं उसको आप तोड़ करके उसको दूर बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 ग्राम पर 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हों उसको काट कर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लिए।

0: लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों को काफ़ी आक्रांत करता है, एंथ्रेक्नोज के कारण फल का जो है वो रंग बड़ा ख़राब हो जाता है और काला काला पड़ने लगता है, इसलिए एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करें ताकि आपके फल की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये खासकर आम के पौधे में होता है और बरकरार रहें। कभी कभी क्या होता है, अधिक बारिश की होने की वजह से बाग में जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल निकासी की समस्या नहीं हो पाती है और पेड़ में तना छेदक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे जगहों में। तो अगर आपको तना छेदक का प्रकोप दिखे तो आप अगस्त सितंबर के महीने में जाला को साफ़ करके जो भी उसका जो अगर तना छेदक का प्रकोप होता है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो छेदक जो है कुछ बुरा लकड़ी जो है अंदर के तने में घुस करके उसको लकड़ी जो है काट करके बाहर बुरादा के रूप में गिराते हैं, तो जहाँ भी आपको बुरादे के रूप में लकड़ी दिखे आम के पेड़ के बाहर आप समझ जाइए कि इसमें तना छेदक है। और उसके उपचार के लिए उस वहाँ पर जो जहाँ पर आपको गिर रहा है वो लकड़ी का उसको साफ़ करके उसको क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करें। इसके अलावा क्या होता है कि तना में छेद कर देते हैं, लीची में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तना में छेद करते हैं और बहुत जालेदार संरचना, गोल गोल संरचना बना के जाले के रूप में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आप लीची के पेड़ में जाले को साफ करें, या आम के पेड़ में भी ये प्रकोप देखने का मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें, जहाँ भी आपको छेद दिखे उसमें कपड़े में पेट्रोल लपेट के उस छेद की सफाई करें। उसके बाद न्यूवान से भींगी रुई छेद में डाल करके उस छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें और इस तरह से वो वाष्पीकृत गंध के प्रकोप से वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से आप जो है स्टेम बोरर से आप अपने लीची या आम के पौधे को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर नवम्बर महीने में रेड बैंडेड कैटरपिलर का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। आजकल किसान बहुत परेशान हैं इस रेड बैंडेड कैटरपिलर से। वो कैसे पहचानेंगे कि रेड बैंडेड कैटरपिलर है, तो आम में जो है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब देखते हैं कि आम के निचले भाग में एक छिद्र टाइप से दिखता है और वहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का छेद दिखता है। उसके कुछ दिन के बाद से आम नीचे से फटने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब अक्टूबर और नवंबर के माह में हम इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसके लार्वे, इसके जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में आम के पेड़ के तने जो होते हैं उसमें जो कुछ तने के जो नीचे क्रैक्स होते हैं, जो खुरदरे भाग होते हैं उसके नीचे वो अंडे छुपे रहते हैं। तो उस समय आपको बहुत आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस से बहुत अच्छी तरह से आम के पूरे तने को आप स्प्रे कर दें। अगर उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो लार्वा बाहर नहीं आ पाएगा, लार्वा बाहर नहीं आएगा तो फिर आपको इस आक्रांत से बच सकते हैं। और आजकल ये बहुत एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है आम में, 2/3 3/4 भाग कभी कभी किसी बगीचे का पूरा नष्ट हो जाता है और इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक है ये काम आप अक्टूबर नवम्बर माह में करें
1: जी।
0: इसके अलावा अक्टूबर नवंबर माह में आपको उकठा रोग या डाईबैक की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर डाईबैक की समस्या में क्या होता है कि ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं, आम की हो या लीची की हो समस्या सूखने लगती हैं, तो आप इसके लिए क्या करें, प्रभावित शाखाओं को 5 से 10 सेंटीमीटर हरे भाग के साथ काट कर हटा दें। उसके बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इस तरह से जो है आप इस डाईबैक के रोग से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लीची और आम में फूल आने तक नवंबर

0: मास के बाद से फूल आने तक कभी भी जो है सिंचाई और पोषण का प्रबंधन ना करें। आम और लीची में ध्यान रखें, आम और लीची में नवंबर माह के बाद सिंचाई और पोषण का प्रबंधन आप नहीं करें। अगर आप पोषण देते हैं, लोग क्या होता है कि वर्षा के बाद प्लॉइंग करते हैं खेत में, बगीचे की खेती प्लॉइंग करते हैं और उनको लगता है कि अब ये फूल आने वाला है तो हम अच्छे से पोषण दे दें ताकि जो है हमारा आगे आने वाले साल में फलन अच्छा हो। लेकिन जब आप नवंबर महीने में आप पोषण करेंगे तो क्या होता है कि फल बनने की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होती है वो बंद होकर के पत्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके पौधे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम और लीची में पोषण का प्रबंधन आप सितंबर के माह तक ही कर लें तो बेहतर है। दूसरी बात, अक्टूबर के महीने में आप जो है बगीचे की जुताई अवश्य करें। आप हम ये नहीं करें कि आप पोषण प्रबंधन करें, अक्टूबर नवंबर महीने में बगीचे की जुताई अवश्य करें ताकि बरसात में होने वाले जो भी खरपतवार हो गए हैं उसकी सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि खरपतवार जो है कीट और रोग का एक अल्टरनेट माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। अगर कोई कीट वादी पेड़ में अगर नहीं है तो भाग करके वो तत्काल में जो है वो खरपतवार में छुप जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बरसात के बाद जो है आप एक बार बगीचे की अच्छी तरह से जुताई करें, पेड़ के में थाला बनाएं, पेड़ के थाला को साफ रखें और चूना तूतिया और पानी का घोल 5:5:50 में बना करके पेड़ के धड़ों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक अच्छी तरह से पुताई कर दें। इससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिल पाएगा। तो ये करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे आप थाला तो बनाएंगे, थाला की सफाई करेंगे, लेकिन पोषण अभी नवंबर महीने में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको फूल बनने की प्रक्रिया बंद होकर के पुनः पत्तियां का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मिली बग जो कि आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं, कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, उसको मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें, उस मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस का भी आप समावेश कर दें और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर, उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें और उसके ऊपर नीचे, पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिली बग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुजिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे, और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें ताकि आप जो है गुजिया कीट से आप बचा सकें। साथ ही साथ छाल खाने वाले मतलब बार्क ईटिंग कैटरपिलर और तना छेदक कीड़ों को भी पहचान कर पहले इसका जाला साफ करें नवंबर महीने में भी, और मोनोक्रोटोफॉस या डाइक्लोरोफॉस का 0.05% के घोल से छेद में डाल करके उसको छेद बंद करें। ये सारे जो है अगर आप इस तरह का प्रबंधन दिसंबर माह तक करते हैं तो ये आप आने वाले फलन के समय में आप जो है बहुत सारे कीट और व्याधि का से आप निजात पा सकते हैं और उसके बाद आपका जो फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी उपज भी ज़्यादा होगी।
1: जी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम, और आशा करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बना कर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बना कर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियाँ हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है यानी कि गैस से संबंधित

समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है, वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे जिंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50 से 80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30 से 90 मिनट की देरी हो सकती है। इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए। आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आप को ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2-3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज़ करेगा।

इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे। फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम।
1: मैम सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
2: जी ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास जमीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
1: तो मैम FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
2: जी इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगी कि खेत में जो टमाटर 2 रुपये किलो मिलता है वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपये किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाएं तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
2: जी यही तो पूरा खेल है, फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात यह है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2-3 गुना तक हो सकता है।
1: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है?

0: इस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं।
1: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन है उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो है उनके साथ एक बैठक करने की जरूरत है। अपने जिले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड उनके कार्यालय में संपर्क करने की जरूरत है। सरकार भी एफपीओ बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
0: मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें एफपीओ बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
1: जी जरूर, तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो एफपीओ होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल एफपीओ के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
0: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
1: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
0: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
1: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10 से 15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा।

0: बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
1: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता लें।
0: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
1: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
0: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
1: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।